FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र

आप ये स्वीकार करने का साहस रखते हैं कि आप सर्वज्ञानी नहीं हैं, और यह स्वीकार्यता बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है साथियों।

जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस व्यक्ति के सालों के अनुभव, उसकी असफलताओं और उसकी सफलताओं से सीख रहे होते हैं। साथियों, मान लीजिए आपको किसी अनजान रास्ते पर जाना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बिना किसी से पूछे निकल जाएं, रास्ते में भटकें, समय बर्बाद करें और शायद गलत जगह पहुंच जाएं। दूसरा रास्ता, आप किसी ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछ लें जो पहले वहां जा चुका है। अब आप ही बताइएगा, रास्ता पूछ लेने में समझदारी है या खुद को भटकाने में? निश्चित रूप से रास्ता पूछ लेना ही बुद्धिमानी है। इससे हमारा समय बचता है, हमारी ऊर्जा बचती है और हम गलतियां करने से बच जाते हैं।

साथियों, अंग्रेजी में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर। यानी अगर आप जल्दी से तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। और सबको साथ लेने की शुरुआत होती है दूसरों के विचारों का सम्मान करने से, उनके मशविरा करने से। सलाह लेने का मतलब साथियों करते ही नहीं है कि आप अपने फैसले अधिकार किसी और को दे रहे हैं, यानी आप अपने फैसले का अधिकार किसी और को दे रहे हैं। सुनना सबकी चाहिए, लेकिन अंत में फैसला अपने विवेक से करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के विचारों की रोशनी में अपने रास्ते को साफ साफ देखता है, फिर कदम आगे बढ़ाता है। इसीलिए साथियों, अपने मन से इस झिझक को निकाल दीजिए। चाहे पढ़ाई का मामला हो, करियर का चुनाव हो, बिजनेस की शुरुआत या जीवन का कोई व्यक्तिगत फैसला, अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो रुकिए, अपने बड़ों से, अपने दोस्तों या उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात कीजिए। सलाह मानना आपकी विनम्रता को दिखाता है, आपके अहंकार के टूटने को दिखाता है, और जहाँ अहंकार नहीं वहीं ज्ञान का वास होता है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आगाज में शौनक अभिषेकी और साथियों की आवाज में ओम जय शिव की आरती।

शोनक अभिषेकी और साथियों की आवाज़ में आप भक्ति रचना सुन रहे थे। आइए अब आपको आवाज़ सुनवाते हैं हरिहरन की, और इनकी आवाज़ में ये प्यारा सा शिव भजन सुनिए।

हरि हरन और साथियों की आवाज़ में भक्ति रचना आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज़ में ये भक्ति रचना। रूप कुमार राठौड़ के साथ हैं तुलसी कुमार।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए हुए इस गीत से। फिल्म का नाम है वक्त। साहिर लुधियानवी ने शब्द दिए हैं और संगीत रवि ने।

पेशी खिदमत है पत्थर की सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की है। मसरूह है सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई है।

खानदान फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं रवि।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू। मिलन फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी के शब्द हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं इंतकाम फिल्म का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में वापस फिल्म का ये गीत। मसरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं पूर्णिमा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गुलजार की शब्द रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आप सुन रहे हैं पूर्णिमा फिल्म का गीत, आवाज़ी लता मंगेशकर और मुकेश की है। गुलजार की शब्द रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार है हरिहरन, संगीत है सतीश भाटिया का, कड़ी है 393।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं? उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्र वंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरु द्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हरिहरन, संगीत सतीश भाटिया का था और कड़ी थी 393। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू और आज इस बेहद खास कार्यक्रम में मैं आपका रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी। तो स्वीकार करें नमस्कार। दोस्तों, आज कैलेंडर पर तारीख है 1 जून, यानी आज पूरा संसार मना रहा है विश्व अभिभावक दिवस, यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। आज के इस ताजा सुबह की हवा में एक अलग ही सुकून है, एक अनूठा एहसास है। तो हमने सोचा क्यों न आज इस पावन और खूबसूरत दिन को दुनिया के उन दो फरिश्तों के नाम कर दिया जाए जिनकी उंगली थाम कर हमने चलना सीखा, जिनकी बदौलत आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, यानी वो है हमारे आदरणीय माता पिता, पेरेंट्स, माता पिता। साथियों, यह सिर्फ एक शब्द नहीं मेरे अजीज साथियों, ये एक एहसास है, एक घनी छांव है, एक ऐसी ढाल जो दुनिया की हर धूप, हर मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले ही खुद पर झेल लेती है। जब हम छोटे थे तो हमारे हर नासमझ सवाल का मुकम्मल जवाब हमारी माँ के पास होता था और पूरी कायनात की सबसे सुरक्षित जगह हमारे पिता के मजबूत कंधे हुआ करते थे। माँ अगर हमारे घर की आत्मा है तो पिता उस आशियाने की मजबूत नींव। एक हमें बोलना और एक संभालना सिखाती है तो दूसरा दुनिया की मुश्किलों के सामने सीना तान कर अड़िग होना सिखाता है। ये हमारे पिता हैं। चलिए आज के इस बेहद हसीन दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत और भावुक कर देने वाले गीत से

जो हमें उस निश्चल ममता की याद दिलाता है जो बिना कुछ कहे हमारे दिल पर हर हाल पल भर में जान लेती है। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

वाकई तुझे सब पता है न माँ। माँ की ममता और उसके स्नेह का इस पूरी कायनात में कोई मोल नहीं। लेकिन दोस्तों, उस इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं जो हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अपने सारे ख्वाब, अपनी सारी खुशियां बिना किसी शिकायत के कुर्बान कर देता है। जी हाँ, हमारे पूजनीय पिता। हम अक्सर माँ के असीम प्यार पर तो बहुत कुछ कह जाते हैं, कविताएं लिख देते हैं, लेकिन पिता का प्यार थोड़ा खामोश होता है, थोड़ा छुपा हुआ होता है। वो कभी जताते नहीं, लेकिन हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। उनके फटे हुए जूते और सादगी में हमारे लिए लाए गए खिलौने का एक अनमोल कर्ज छिपा होता है। आज के इस आपाधापी और भागदौड़ भरे वक्त में हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम अपने माता पिता के साथ सुकून के वो दो पल बिता रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा वक्त दे पा रहे हैं? आज इस मंच से सोचिएगा जरूर। इसी सुंदर सोच के साथ आइए सुनते हैं खास गीत जो समर्पित है दुनिया के हर उस पिता को जो अपने बच्चों की नजरों में उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा सुपर हीरो होता है।

साथियों, यह विश्व अभिभावक दिवस सिर्फ हमें ये याद दिलाने के लिए नहीं आता कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, बल्कि यह बेहद खूबसूरत मौका है उन्हें यह एहसास कराने का कि हम उनसे कितना बेपनाह प्यार करते हैं। आज जब आप काम से घर लौटें या अपने काम के सिलसिले में आप कहीं दूर रहते हैं, तो उन्हें एक फोन जरूर लगाइएगा। उन्हें आपसे कोई महंगा तोहफा या दौलत नहीं चाहिए, उन्हें बस आपका थोड़ा सा वक्त, आपका थोड़ा सा आदर और आपके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान चाहिए।

साथियों, बस यही अनमोल बात कहना चाहेंगे कि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता पिता का साया और उनके निश्चल प्यार दोबारा कभी नहीं मिलता। उनकी कद्र कीजिए, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए, उनका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखिए जैसे उन्होंने आपके बचपन में अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। श्रोताओं, आज तारीख है 1 जून और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारी सेहत, हमारी खेती किसानी और हमारे बचपन की ढेर सारी खट्टी मीठी यादों का दिन है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। दूध एक ऐसा नाम जो सबसे पहले हमारी माँ की याद दिलाता है। याद कीजिए बचपन का वो दूध जब सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले सामने क्या आता था, माँ के हाथ में गर्मा गर्म दूध का गिलास। हम चाहे कितना भी मुंह बना ले, चाहे कितने भी बहाने ढूंढ ले, लेकिन माँ की ममता और वो दूध का गिलास हमें ढूंढ ही निकालता था। वो दूध सिर्फ हमारा पोषण नहीं था दोस्तों, वो हमारे माता पिता का हमारे प्रति निश्चल प्यार और फिक्र थी। तो श्रोताओं, कितना अच्छा संयोग है 1 जून को। आज के दिन हम विश्व अभिभावक दिवस मना रहे हैं और आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस भी है। ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन की वो नींव जिन्होंने हमें बड़ा किया, हमें वो ताकत दी, हमें इस काबिल बनाया कि आज समाज में हम सीना तान कर खड़े हो सकें। दूध को हमारी संस्कृति में अमृत का दर्जा दिया गया है जो सेहत का एक संपूर्ण खजाना है।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने साल 2001 में इस दिन की शुरुआत की थी ताकि हम दूध के महत्व को समझ सकें। हमारा देश भारत तो वैसे भी नदियों का देश है और यहाँ तो श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुनिया की नदियाँ बहने का एक शानदार इतिहास रहा है। गाँव की वो सुबह जहाँ दूध दुहने की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी, वो आज भी हमारे दिलों में बसी है। दूध सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये हमारे देश के लाखों किसान भाई बहनों और गोपालकों की मेहनत का प्रतीक भी है, जो दिन रात एक करके हमारे घरों तक दूध पहुंच

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कोल्ड ड्रिंक्स या डिब्बाबंद चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो बात एक ग्लास ठंडी लस्सी, गर्म दूध या छाछ में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। तो आज इस दुग्ध दिवस पर खुद से वादा कीजिए कि सेहत से कोई समझौता नहीं होगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं, आज हमारे एक चर्चा का विषय और हम ले रहे हैं एक शाश्वत सत्य को जो हम अक्सर अपने जल्दबाजी में भूल जाते हैं, यानी छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग बड़ी सफलता के सपने देखते हैं, लेकिन हर बड़े सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है और एक एक ईंट से भव्य आशियाना खड़ा होता है। अगर आज आप अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव करते हैं तो भविष्य में वही एक बड़ा चमत्कार बन के सामने आता है। साथियों, आपने बहुत सी बातें ऐसे सुनी होंगी कि आदमी जो कई बार परेशानी में आकर के थक हार करके बैठ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ता है और छोटे छोटे कदमों पे विश्वास रखता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा बीज ये सोचकर जमीन के भीतर ही रुका रहे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो क्या कभी एक विशाल बरगद का पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे भी मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा कदम ऊपर की ओर बढ़ाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अपनी निरंतर मेहनत पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अगर आप रोज 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं तो साल के अंत तक आप खुद में एक बहुत बड़ा और सुखद बदलाव देखेंगे। आपका आज का उठाया गया एक छोटा सा कदम आपकी कल की बड़ी मंजिल का रास्ता तैयार कर रहा है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए।

जन विकास कार्यक्रम और 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक अधोसंरचना को बेहतर बनाने का काम करता है। स्कूल और कॉलेज का निर्माण, पिछड़े क्षेत्रों में नए स्कूल कॉलेज और पॉलिटेक्निक भवन बनाए जाते हैं। हॉस्टल की सुविधा की बात करें, साथियों, दूर दराज के छात्रों विशेषकर लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण होता है। लैब और लाइब्रेरी की बात करें, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालयों को आधुनिक बनाया जाता है। संसाधनों की बात करें तो मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों में क्लासरूम और बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाती है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिल

0: तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा

0: विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा

0: दिल्ली वालों की राहत वाली हवा 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Beginning experiments from 2026 to 2029, new Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani, Chief of Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan assume office, informs the Tribune. Kohli powers RCB to consecutive IPL glory, reports Hindustan Times. And finally, for mall outlets, summer's time for some cool business, writes Economic Times, adding eateries, fashion and beauty retailers at malls thrive as customers look to escape heat and spend time in AC. And with that, it's back to Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. Notification for biennial elections to 24 Rajya Sabha seats from 10 states to be issued this morning. Centre to launch month-long Khet Bachao Abhiyan to promote judicious use of fertilisers from Raisen district in Madhya Pradesh. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari to expand his cabinet this morning with induction of 35 new ministers. Renowned singer Suman Kalyanpur passes away in Mumbai. And in cricket, Royal Challengers Bengaluru win second consecutive IPL title, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match at Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए झलकी।
3: आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
4: मिस्टर भैरवीलाल, मिस्टर बीलाल।
5: यस सर।
4: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
5: मक्खियाँ, मोमो मक्खियाँ। सर, मैं आपको मतलब नहीं समझा।
4: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवीलाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
5: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
4: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियाँ मारते रहते हो।
5: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
4: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों मिस पाउडर वाला?
6: यस बॉस।
4: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
6: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करते हैं सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
4: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
5: सर, जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
6: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
5: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
6: मछली? You mean a fish?
4: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
5: अच्छा।
4: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
6: झपटो।
4: राइट,
5: हम तो पहले कस्टमर तक पहुंच ले जहन्नम पावे। सर, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
4: देखो, कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
6: Really sir, it is a wonderful idea. अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
5: जाए कैसे मैं साहब? Sir, sir,
4: yes, yes,
5: really, you are a brain.
6: Really, sir, you are a genius.
4: Customer, quiet, quiet, quiet. Customer, aaya hai.
6: Customer, na kahiye, sir.
7: Wonderful. आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
8: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़े से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
9: वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही

0: कान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
1: हाँ।
0: यहाँ मुझे काफी ज्ञान मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
2: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई,
3: मोटी मछली।
2: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। मोटी मछली वो आप देखे ना सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
0: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
2: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
0: Oh, I see. You mean fat fish?
2: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
1: Yes,
2: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
1: Sure.
2: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
0: मोटी मछली? Oh, I see. It's a really lovely fat fish.
2: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
0: आपकी तरह।
2: सर ये देखिए,
0: I like it very very much.
2: Oh, thank you sir, thank you. आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
0: मेरा छोटा बच्चा?
1: Yes.
0: Oh, he is only 5 months old.
1: Oh, good.
2: Very good sir, very good. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
0: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
2: वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
0: ऑटोमेटिक?
2: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
0: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
2: हाँ सर, देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर। और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। जी जी जी, मेरा मतलब है सर ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
0: वेरी गुड,
2: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, मिस पाउडर वाला।
4: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
2: पाउडर वाला भी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है, मोटी मछली।
0: मछली?
4: ओके बॉस। सर आप सर हाथ आगे देंगे?
0: आई यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
4: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
0: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका
4: सर। ये सेंट काटा मटा जैस्मिन सेंट का है।
0: काटा मटा जैस्मिन?
4: यस सर, काटा मटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है सर। जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है सर, वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
0: लेकिन ये शैम्पू,
4: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
2: ओ मिस पाउडर पर
5: बच्चे चुप है।
2: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
4: आई एम सॉरी सर।
2: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर। वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
0: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर। मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं। लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है। मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल है। आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू। और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
6: गुड इवनिंग। ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर, आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बैंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।

0: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है। माय हॉबी।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
0: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे या दादरा तुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे या फिर आप फिल्मी गाने?
0: झुमका गिरा रे
1: जैसा कि कल जो

0: रही है। मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
1: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
0: लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
1: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
0: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
1: कोल्ड ड्रिंक।
0: सुनो सुनो सुनो,
2: इनके लिए लाइका
1: ओहो जूस,
0: मैंगो जूस लाओ।
2: बुलाए थे साहब,
1: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी
0: सर। ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
3: मैंगो जूस
0: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आपकी ये सेब खाइए सर, आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
3: भाई तो खाना ही पड़ेगा।
0: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
1: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
0: भैरवी लाल आज उस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
1: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
0: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए।
4: ये सर
3: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक है।
4: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
3: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
4: व्हाट,

0: सुइयों के पास में। सर वो तो हमने यही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर, आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
0: पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं
2: चला।
3: मोटी मछली, वी एम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल।
4: अभी आप सुन रहे थे मोटी मछली झलकी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले समाचार तरंग और उसके बाद 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। मैं हूं आपके साथ सालिहा। स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन। हमारा देश भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के किले, महल, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हमारी गौरवशाली परंपरा के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं धरोहरों की संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें संचालित की जा रही हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी से। मनीष जी, आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: मनीष जी, राजस्थान जो है विरासत की दृष्टि से बात करें तो बहुत ही समृद्ध राज्य माना जाता है और केंद्र सरकार यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, उनके संरक्षण में किस प्रकार का विजन लेकर काम कर रही है?
1: देखिए, राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है कि जहाँ पे टूरिज्म प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो शायद एक समंदर नहीं है। बाकी सब चीजें जो एक पर्यटक को चाहिए देखने के लिए, वो चाहे रेगिस्तान हो, चाहे झीले हो, चाहे नदियां हो,
0: किले हो,
1: चाहे
0: प्राचीन
1: मंदिर हो, चाहे ग्रामीण जीवन का अनुभव लेना हो, चाहे हवेलियां हो, वो सब कुछ जो एक विदेशी पर्यटक या देशी पर्यटक कोई भी देखना चाहता है वो राजस्थान में मिल जाता है। उस दृष्टि से राजस्थान देश के पर्यटन नक्शे में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अजमेर जैसे अभी प्रसाद योजना में शामिल है, जयपुर का जो परकोटा शहर है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। जयपुर में ही जो है जंतर मंतर और इस तरह के जो स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की।
0: झालावाड़ में चाहे गागरौन का किला है, चित्तौड़गढ़ है, ये सभी
1: चीजें विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो राजस्थान उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अच्छी बात यह भी है कि जो पर्यटन मंत्री हैं देश के वो भी राजस्थान से जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अलग अलग योजनाओं में, प्रसाद योजना हो, चाहे हृदय योजना हो, चाहे पर्यटन सर्किट्स, क्योंकि जयपुर आप देखिए कि जयपुर एक उस गोल्डन ट्रायंगल पे है, जयपुर आगरा और दिल्ली को मिलाकर के एक ट्रायंगल जो बनता है उसका एक यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा पर्यटन मतलब धार्मिक सर्किट के इतिहास से भी देखा जाए तो राजस्थान के जितना भी ये जो आपका खाटू श्याम जी का इलाका है, सालासर बालाजी है, उसके अलावा बाकी जो आसपास के धार्मिक स्थल हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुष्कर है, पुष्कर को जो है विश्व मतलब देश में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। पुष्कर के साथ अजमेर में दरगाह है, तो वो एक बहुत पूरा एक ऐसा बुके है अपने आप में कि जो एक पर्यटक को धार्मिक अनुभव भी देता है यदि वो धार्मिक स्थल पे धार्मिक यात्रा के हिसाब से आना चाहता है, और यदि वो मतलब घूमने के लिहाज से आना चाहता है तो उसकी दृष्टि से भी

0: बहुत अच्छा अनुभव राजस्थान में पर्यटकों को और जो भी विदेश से जो लोग आना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा।
1: सर अभी आपने जिक्र किया प्रसाद योजना का, तो आपको क्या लगता है कि इसके माध्यम से धार्मिक स्थलों के संरक्षण में हमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है?
0: इसमें एक सरकार ने जो बहुत बड़ा काम किया है, जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल थे जैसे पटना साहिब हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया, इस तरह के जो पर्यटन स्थल थे उनके आसपास जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए होना चाहिए जो कि जो एक पर्यटक के लिए बहुत जरूरी है, जो वहां पे लोग आ रहे हैं उनके लिए एक इजी पहुंच हो जाए, वहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना रहे, उनके स्टे की कोई दिक्कतें ना रहे, उसको लेकर के पूरा एक सारी योजना इसको लेकर के चलाई गई है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है। जो अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए गए जैसे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, महाकाल में जो इस तरह का कॉरिडोर बना है, कामाख्या मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है, पुष्कर के लिए इसी तरह की बात चल रही है कि यहाँ भी इस तरह का एक पूरा विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से वहां पे अब तक जो दिक्कतें आ रही थी अतिक्रमण की वजह से दिक्कतें थी या और दूसरी वजहों से दिक्कत थी, लोग आते थे, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, और आप देखिए कि जितना भी जो हरिद्वार से ऊपर का इलाका है वहां की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बना दी गई है पहले के मुकाबले। जितना भी मतलब आप चाहे चार धाम की यात्रा करने जाएंगे तो पहले जितना समय लगता था उसके मुकाबले उसको बहुत कम समय कर दिया गया है, वहां पे सड़कें बहुत बेहतर बना दी गई है। तो ये जो पूरा काम हो रहा है प्रसाद योजना के तहत अलग अलग सेगमेंट में, उसके तहत लोगों को मतलब एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी मिली है और जो उनका आने जाने का समय है वो भी बहुत बचा है, और वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, जो स्टे की व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले के मुकाबले काफी बेटर।
1: यानी ये जो धार्मिक हमारी श्रद्धा के केंद्र है और विरासत स्थल है उन तक लोगों की पहुंच को सुगम किया गया है, लोगों के लिए उन वहां पर सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है। अगर हम बात करें हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी हृदय की, तो इसके तहत राजस्थान में कौन कौन से काम किए गए हैं?
0: देखिए राजस्थान में मुख्य तौर पर अजमेर को इस योजना में शामिल किया गया था, और अजमेर में चूंकि दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, एक तो पुष्कर है और दरगाह है, तो जिनमें की पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहां पे इस तरह का काम, उसके डेवलपमेंट का काम उसके तहत चल रहा है हृदय योजना के तहत। और उसके अलावा देश के बाकी जो शहर हैं उनमें भी जो है, जैसे अमरावती है वहां पे इसको चुना गया है, द्वारका है गुजरात में उसको चुना गया है, गया है बिहार में, ये सब शहर हैं, एक वाराणसी है, बनारस जो कि खुद प्रधानमंत्री जी का
1: निर्वाचन
0: क्षेत्र भी है, मथुरा है, तो ये पुरी है उड़ीसा में। धार्मिक महत्व के जो ये जितने भी शहर हैं उनमें सरकार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, वहां पर उन जो है वहां पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वहां पे, पानी की दिक्कत है या सड़कें हैं या स्वच्छता की बात है, उन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और जैसे अजमेर में है लगभग काफी काम इसके तहत हो रहा है, पुष्कर को डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां पे पुष्कर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, दरगाह स्थल के आसपास भी इस तरह का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक काफी एक अलग उद्देश्य के साथ शुरू की गई योजना है।
1: मनीष जी अगर हम देखें पुराने स्थलों को तो तब से अब तक चाहे शहरीकरण हो चाहे आबादी का बढ़ना हो, बहुत से ऐसे कारण रहे हैं कि ये स्मारक जो है अतिक्रमण से भी घिर गए हैं और आबादी बढ़ने के साथ ही ये उनका जो उन तक पहुंच है वो इतनी आसान नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के लिए या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के लिए भी ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में आमतौर पर किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं?
0: सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण वाली, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहले जब ये जिस जमाने में कभी धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल बनाए गए होंगे तब आबादी इतनी नहीं थी, पर धीरे धीरे समय के चक्र में चलते चलते आप लंबे समय तक तो वहां पर आसपास बहुत अतिक्रमण भी हो जाता है, व्यापार एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था वहां पर डेवलप होती है, उन सब को हटाना, विस्थापित करना और बेहतर उसको बनाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये चीज हमने काशी में भी देखी, वहां भी जब जिस तरह की जब हटाए गए थे लोगों को तो बड़ा एक विरोध भी सामने आया था, उतना आसान नहीं था, या अयोध्या में भी हुआ, बहुत दिक्कतें आई वहां पे भी, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। अल्टीमेटली फायदा वहां के लोगों को होता है क्योंकि जब वो एक बेटर एक प्लेस बन जाएगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, तो नेचुरल लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे वहाँ पे,
1: और आर्थिक गतिविधियों को भी
0: बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक बार को बहुत डीस्टैब्लिश होते हैं, मतलब
1: फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें थोड़ी परेशानी,
0: दिक्कत होती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को इसके बारे में समझाना, क्योंकि लोग बरसों से वहाँ पे टिके हुए हैं, रहे हैं, उनको हटा करके दूसरी जगह यदि ले जा रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत का काम होता है। तो ये एक चुनौती है इसमें निश्चित रूप से। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो उसका स्वरूप है, मूल स्वरूप उस जगह का, उसका बनाए रखना, उसको बनाए रखना, कि वो जिस उद्देश्य से बनाया गया किसी जमाने में हमारे फोर फादर्स ने, या जब भी हमारी पूर्वजों ने जो उसको चीज को बनाया, वो अपने मूल स्वरूप में बनी रहे, उसका जो अतिशय है, उसका जो एक जिसको कहते हैं कि आप उसको चमत्कार से जोड़ लीजिए या किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, वो एक बना रहे उसका, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा ही अच्छा काम करती है उसको मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए, पर उसके साथ साथ उसमें उसकी मरम्मत की जरूरत भी होती है, इसकी देखभाल की जरूरत भी होती है, पर वो इस ढंग से हो कि उसका मूल स्वरूप नष्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो देखने आ रहे हैं लोग वो उसकी प्राचीनता देखने के लिए आ रहे हैं, उसको मतलब वो देखने नहीं आ रहे कि वहां पे आपने क्या नया बना दिया, नया कंस्ट्रक्शन देखने नहीं आता, जो भी आ रहा है वो देखने के लिए आ रहा है कि उस जमाने में क्या बनाया गया, तो उसको उसी स्वरूप में बनाए रखना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
1: सर, अगर राजस्थान के परिदृश्य की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में कई हैं, 8 यहाँ पर इस तरह की धरोहर हैं, तो उनके संरक्षण के लिए सरकार की ओर से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: देखिए, इसमें यूनेस्को के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे ही यूनेस्को उसको विश्व धरोहर सूची में लेता है, जैसे जंतर मंतर है हमारे यहाँ से, या मान लीजिए जयपुर के परकोटा शहर को उन्होंने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में लिया है, तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी
1: जी,
0: कि आप जो इसका जो मूल स्वरूप है वो बनाए रखेंगे, जो इसका जैसे मान लीजिए जो परकोटे का बाजार है उसका फसाड़ जो है वो आप उसी स्वरूप में रहना चाहिए, उसी कलर में होना चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे मामले, और वो स्थल के हिसाब से होता है कि जो जो भी स्थल है उसकी जो प्राचीनता है, उसका जो एक जो पुराना स्वरूप था वो उसको मेंटेन आप रखेंगे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे वो लोग किसी भी स्थल के लिए उसको सूची में शामिल भी करते हैं और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे अभी भी जयपुर शहर के लिए भी इस तरह की बात आई थी कि जयपुर शहर देखने के लिए मतलब वो
1: जो यूनेस्को की कमेटी ही उनका जायजा लेती है,
0: वो आके देखती है कि किस तरह का हम जो चीज सोच के गए थे वो हुई कि नहीं हुई, अब तक जो काम हम बता के गए थे वो उस तरह से हुए हैं कि नहीं, तो एक वो पूरा चलता है। तो वो हमारे जितने भी स्थल हैं इस तरह के उनको रेगुलर वो मॉनिटरिंग उसके यूनेस्को की जो कमेटी है उसके अंडर में रहते हैं, वो समय समय पर उसको आके देखती भी है, और ये ऐसे ही की जिम्मेदारी होती है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जिन शर्तों के आधार पे वो बनाया गया, उसको जो धरोहर सूची में रखा गया वो बना रहे।
1: सर, अगर हम तकनीक की बात करें तो आजकल हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो अगर हम संग्रहालयों या और स्थलों की बात करें तो उनके भी नेचुरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल टूर भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि तकनीक का इस क्षेत्र में कितना उपयोग हो पा रहा है?
0: ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो तकनीक के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब यदि आप इसमें तकनीक ने जितना बड़ा रोल प्ले किया है उतना शायद मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर में और में किया होगा, क्योंकि ब्लॉगर्स के जरिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें हम आज देख पा रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, जो कहीं दुबी छुपी थी, वहां पे नए लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी वीडियोज डाल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे लोग मतलब वॉलंटरली ये बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, यहाँ पर आप क्या ध्यान रखें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये अल्टीमेटली उन स्थलों को फायदा कर रही हैं।
1: जो हमारा निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, और स्थानीय समुदाय की भी इसमें बड़ी भूमिका है, तो उसे भी कैसे तय किया जा सकता है?
0: केंद्र सरकार ने एक अडॉप्ट मोन्यूमेंट एक स्कीम शुरू की हुई थी, उसमें शायद अभी तक 21 के आसपास MOUs हुए हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर एक मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करता है, उसका सारा देखभाल उसमें करता है, तो देश भर में करीबन अभी शायद 21 के आसपास उस में MOUs सरकार के साथ हुए हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ सरकार नहीं प्राइवेट जो लोग हैं वो भी उस मॉन्यूमेंट को देखें और संभालें। इसके अलावा स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए होती है कि जो भी इस तरह के स्थल हैं वो अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की वहाँ की जो आजीविका है क्या उसको बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं, तो उनकी सहायता मिलना वो उसको बना करके रखें। जैसे उदयपुर के लोगों ने अपने शहर को बहुत अच्छे ढंग से संजो के रखा हुआ है, तो इस तरह का एक इनिशिएटिव मुझे लगता है कि पूरे देश में अलग अलग समुदायों में होना चाहिए, अलग अलग शहरों में होना चाहिए कि जो वहाँ के लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखें ताकि वो उनको भी फायदा दे और देश को तो फायदा दे।
1: मनीष जी, विरासत संरक्षण के कामों पर ये

0: सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अंत में हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आम नागरिक या स्थानीय समुदाय या युवा वर्ग किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सकता है, इन सब श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
1: देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि आपका शहर, आपकी जो भी विरासत है, उसको यदि संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जड़ें हैं, तो जड़ें जब तक नहीं सींचेंगे तब तक पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको संभाल के रखिए, इसको संजो के रखिए, इसको देखने लोग आएंगे तो वो आपको भी फायदा देंगे और आपकी खुद की जो एक सांस्कृतिक पहचान है जो देश की, वो बनी रहेगी। कम से कम खुद की पहचान बनाए रखने के लिए इस विरासत को संभाल के रखिए।
0: मनीष जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, वाकई जो हमारी धरोहर है वो केवल अतीत की पहचान नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करती है। इनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा सुदर्शन नाहर, तकनीकी सहयोग सुप्रियो बैनर्जी, संपादन रितिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
4: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचाने, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
3: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले दो दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अलसुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया।
1: It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th. RCB all the way.
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल।

दिल ही तो है, इस फिल्म की ये कवाली आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना और रोशन का संगीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है मोहम्मद रफ़ी मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में ये प्यारी सी कव्वाली। फिल्म का नाम है बरसात की रात। साहिर लुधियानवी ने इस कव्वाली को लिखा है और संगीत रोशन ने दिया है।

अभी आप सुन रहे थे बरसात की रात फिल्म से ये प्यारी सी कवाली, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी मन्नाडे और साथियों की थी। और इसी के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त चंद्र प्रकाश बेदी। तो स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। संगीत के आकाश से एक बेहद चमकीला और सुकून देने वाला तारा टूट गया है। जी हाँ, हमारी अपनी, हम सब की चहेती और 6 दशकों तक अपनी मखमली आवाज से हमारे दिलों पर राज करने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही। मई 2026 की शाम 89 वर्ष की आयु में उन्होंने फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं जाते जाते भी वो अपने गाए हुए पुराने गीत सुन रही थी। आज का हमारा ये 30 मिनट का सफर उस महान आवाज को हमारी और आपकी तरफ से एक छोटी सी लेकिन भावभीनी श्रद्धांजलि है।

आइए सफर की शुरुआत उनके ही गाए एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमे से करते हैं, जिसने न जाने कितने ही दिलों के तार छेड़े थे।

वाह क्या कशिश थी इस आवाज में। श्रोताओं, जब भी ये गीत बजता है वक्त जैसे ठहर सा जाता है। सुमन जी की आवाज की सबसे बड़ी खूबी भी यही थी, बेहद कोमल, शालीन और सीधे रूह में उतर जाने वाली। सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत की ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, हुआ था। उनके पिता शंकर राव हेमाडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था। साल 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया। बचपन में सुमन जी का रुझान संगीत से ज्यादा चित्रकला की तरफ था। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला भी लिया था, लेकिन नियति ने तो उनके लिए कुछ और ही कैनवास चुन रखा था, सुरों का कैनवास।

श्रोता, उनके सफर की बात तय करने से पहले जो हम गीत सुन रहे हैं, आपको बता दें मोहम्मद रफी के साथ गाया हुआ उनका ये मशहूर युगल गीत, जिसे उन्हें रातों रात हर घर की पसंद बना दिया।

क्या ऊर्जा है साथियों इस गीत में। और रफी साहब के साथ उनकी जोड़ी ने तो जैसे इतिहास रच दिया था। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सुमन जी ने 1960 के दशक में रफी साहब के साथ 140 से भी ज्यादा युगल गीत गाए थे। ठहरिए, होश में आ लूं, नाना करते

सुमन जी के संगीत सफर की शुरुआत भी एक दिलचस्प किस्सा है साथियों। जब वे कॉलेज में एक कार्यक्रम में गा रही थी, तब महान गायक तलत महमूद साहब की पारखी नजर उन पर पड़ी। उन्होंने सुमन जी की आवाज सुनी और शाबाशी देते हुए उन्हें रिकॉर्डिंग कंपनी HMV से मिलवाया। साल 1954 में मंगूफ और दरवाजा से उन्हें प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा। दरवाजा में तलत साहब के साथ गाया उनका पहला गीत एक दिल दो है तलबगार, आज भी संगीत के जानकारों का पसंदीदा गीत है।

साथियों, अक्सर लोग रेडियो पर उनकी आवाज़ सुनकर धोखा खा जाते थे कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ है। दोनों की आवाज़ का टेक्सचर और मिठास काफ़ी हद तक एक जैसी थी। इस समानता ने जहां एक तरफ उन्हें बहुत सी फिल्मों में मौके दिलाए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें ताउम्र लता जी की परछाई कहलाने का बोझ भी उठाना पड़ा। लेकिन सुमन जी कभी इस बात से विचलित नहीं हुई। उनका स्वभाव इतना शालीन और सौम्य था कि वे हमेशा लता जी को उनकी करीबी दोस्त मानती थी। उन्होंने विवादों से खुद को दूर रखा और खामोशी से अपनी एक अलग पहचान, स्वतंत्र और मुकम्मल पहचान बनाई।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रलोक। श्रोताओं, साल 1958 में रामानंद कल्याणपुर जी से विवाह के बाद वे सुमन हेमाडी से सुमन कल्याणपुर बन गई। उनके पति हर रिकॉर्डिंग में साये की तरह उनके साथ रहते थे। सुमन जी ने हमेशा एक बेहद सादा और पारिवारिक जीवन जिया। चकाचौंध और स्टारडम से दूर वे सिर्फ अपने सुरों से प्यार करती थी।

श्रोताओं, सुमन जी के करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी आवाज की तुलना स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से की जाने लगी। कई बार रेडियो पर गाना सुनकर आम श्रोता फर्क नहीं कर पाते थे, मगर सुमन जी ने कभी किसी की नकल नहीं की। उनकी आवाज में अपनी एक मौलिक मासूमियत और गजब की शास्त्रीय शुद्धता थी। यही वजह थी कि उस दौर के हर बड़े संगीतकार ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना।

गानों को सुनकर आज भी पैर थिरकने लगते हैं। सुमन जी जितनी माहिर गंभीर गानों में थी, उतनी ही सहजता उन्होंने ऐसे चुलबुले बेबी नंबर्स भी गाए। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में 800 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए अब सुनते हैं दिल एक मंदिर में जो फिल्म है उसका एक बेहद पूजनीय और अमर गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

दिल एक मंदिर है। वाकई संगीत प्रेमियों के दिलों में सुमन जी की यादें हमेशा एक मंदिर की तरह ही पवित्र और सुरक्षित रहेंगी। 3 दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से फिल्म जगत को सजाने के बाद उन्होंने खुद को चकाचौंध से दूर कर लिया, लेकिन उनकी आवाज की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक इस कायनात में संगीत रहेगा उनके सुर गूंजते रहेंगे।

और कल 31 मई को मुंबई के लोहखंड वाला स्थित अपने आवास में उम्र के 89वें पड़ाव पर इस महान गायिका ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उनके करीबियों का कहना है कि वो शांति के साथ विदा हुई, अपने ही गाए पुराने गानों को सुनते हुए। शायद वो भी जानती थी शरीर भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन ये सुर ये गीत कभी नहीं मरते। श्रोताओं, आज संगीत के इस सुनहरे युग का एक और पन्ना पलट गया। सुमन कल्याणपुर जी अब शय शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी रेडियो पर कोई मीठी सुरीली और दिल को छू लेने वाली आवाज गूंजेगी, हम समझ जाएंगे कि सुमन जी यही हैं हमारे आसपास हवाओं में घुली हुई।

आकाशवाणी परिवार की ओर से इस महान और सौम्य आत्मा को हमारी विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ अपने दोस्त चंद्र प्रकाश बेदी को आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियाँ लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।

0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं?
1: मैं तो अच्छी हूँ।
0: मितुल जी, आप राष्ट्र कवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं कवि हैं वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा,
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ

0: बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए उस जमाने

0: एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर।
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ।
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी, ना मेरे बापू हमको

0: थे
1: जी।
0: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से, एकदम सीधे सादे व्यक्ति
1: और सिद्धांतवादी।
0: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा।

0: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
1: जी,
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूँगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज।

0: लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा।
0: सब तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं, ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना

0: प्रदीप जी को, मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संपन्न
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी की द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।
2: गा रही है जिंदगी।

0: कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की तरह,
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुँचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहाँ हत्या हुई
0: जी
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा
1: हाँ, तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ, और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू
0: जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी,
1: थी
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत कुछ।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही।

0: जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन जी, ये यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त, लिखी
1: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी, तो मितुल जी आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी

0: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
1: जी
0: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी। तो तब मैंने ये सब सुना था, और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको
1: बिल्कुल
0: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
1: जी
0: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत कर दिया।
0: भूमिगत, भूमिगत। तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
1: जी
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों की भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: पूरी नहीं
1: गाना जी
0: होती।
1: बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल। वो दर्शन,
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 11:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर

कार्यक्रम माटी के स्वर में आज आप सुन सकेंगे आरती सोनी एंड पार्टी को। समय रहेगा 12:30, 1 बजे आप सुन सकेंगे जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। घर आंगन आप सुन सकेंगे 1:05 पर। 2 बजे समय रहेगा दिल्ली केंद्र से रिले मिड डे न्यूज के लिए। 2:15 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से ही रिले दोपहर समाचार। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स आप सुन सकेंगे 2:30 पर।

सायंकालीन प्रसारण सभा में आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। कार्यक्रम रहेगा युववाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। दिल्ली केंद्र से ही रिले अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। 6:20 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। जयपुर केंद्र से ही रिले कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे 6:40 पर। और 6:45 पर समय रहेगा जयपुर केंद्र से रिले राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। न्यूज़ @9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का समय रहेगा रात्रि 9:30।

जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम खेल जगत आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर समय रहेगा सुगम संगीत का। दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे रात्रि 11 बजे। 11:05 पर समय रहेगा दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी में समाचारों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज के प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

एस बिहारी का लिखा ये नगमा आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से चित्रपट संगीत।

आइए सुनते हैं कुमार सानू को फिल्म जख्म में। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत है MM करीम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न।

0: दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह

अधिकारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह

0: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी,
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते हैं।

0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा

0: भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज

इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस

0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच

0: देखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIT NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती है
1: जी।
0: और यह किताबें आपको

0: ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
0: जी,
1: अगर आप

0: ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय

जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ।

0: समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार

जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन

0: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, असफलताओं की चिंता मत करो, असफलताएं जीवन का स्वाभाविक अंग हैं, जीवन का सौंदर्य हैं। यदि तुम 1000 बार भी असफल हो जाते हो तो 1 बार फिर प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है।
1: FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक गीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें आज के कलाकार हैं आरती सोनी एंड पार्टी।

இதெல்லாம் அருளி ரமேஷா அப்பா, இதெல்லாம் அருளி ரமேஷா.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके।

आकाशवाणी केंद्र चूरू से आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें आज आप सुन रहे थे आरती सोनी एंड पार्टी को FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

0: न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.5 रुपए तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रुपए होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मानसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज्यादा हेडपंपों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम है घर आंगन, कार्यक्रम ले हाजिर हूँ मैं भावना। तो आपने कार्यक्रम में अपनी बहनों करा मोकलो मोकलो स्वागत और कराबा सब शू राम राम। बहनों हमारे ई कार्यक्रम के माध्यम से मैं थाने बहुत सारी जानकारियां देवा हाँ अलग अलग विषय पर, और भी के साथ साथ मीठा मीठा लोक गीत सुनार थारो मनोरंजन भी करा हाँ। तो कार्यक्रम में आज भी बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं और साथ ही थारे लिए ले रहे हैं मीठा मीठा लोकगीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करा ई मीठे से लोकगीत रे साथ।

कहना मानकर राजस्थान की लोक भावना से भी जुड़े हुए हैं। अब बात करा आप कि जो राजस्थानी लोकगीत हैं बिकमैन मोर या मोरिये रो बोलने को अक्सर पति या प्रेमी से दूर रही पत्नी री पीड़ा यानी कि विरह न दर्शावे है। और आपा मोरिये का बहुत सारा गीत भी सुना अभी के साथ साथ आप देखा कि जो वस्त्र हुए वहां पर भी मोरिये रा चित्र हुए है। तो मोरियो एक खास प्रतीक मान्य जावे है। राजस्थान में मोरियो एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अभी अभी आपा सुने हो जी मैं नायिका जो रात ने मोर की आवाज सुनर भावुक हो जावे है और अपने प्रियतम री याद में रोन लागे है। मोर की आवाज प्रिय मिलन और विरह दोनों प्रतीक मान्य जावे है। एक साथ साथ जो मोरियो है वो मानसून और हरियाली को सूचक भी माने जावे है। राजस्थान रे शुष्क रेगिस्तानी इलाका में मोर रो बोलनो बारिश के आगमन यानी कि मानसून को शुभ संकेत माने जावे है। मोर बादला ने देख कर नाचे और अपनी म्याऊ या प्यू जिसी आवाज से बादला ने बुलावे बारिश आने से किसाना में खुशहाली छा जावे। इसलिए मोर की आवाज स्मृति और प्रकृति के उल्लास में देखो जावे है। एक साथ साथ बात करा राजस्थान रा पारंपरिक आभूषण कपड़ा री कढ़ाई और गीता में जिया की मारे हिवड़े में नाचे मोर में मोर हमेशा छायो रवे है। यो लोक संगीतकार री कविताओं और धुनारो मधुर बनाने में भी एक प्रमुख विषय है वो माने जावे यानी राजस्थानी लोक साहित्य और संगीत से भी मोर है वो जुड़ेड़ो रवे है। एक साथ साथ जो भौगोलिक और प्रशासनिक स्तर पर भी मोर को विशेष स्थान है। राजस्थान रे भीलवाड़ा जिले का आधिकारिक शुभंकर मोर है जो बैठे

तो जो मोरिये पे गाना बने है बस सुनर आपा जिया कई बार के है कि जो विकी आवाज सुन रही है पतो लगा लिया कि आज बारिश आ रही है। कई बार के वे कि मोर की जो आवाज है भी से कई बार अशुभ संकेत भी आपा मन में या एक डर सो बैठ जावे। तो जो मोर पे जो गीत बनया है वे और भी के साथ साथ अपने राजस्थानी जो साहित्य है भी मैं भी मोर को बहुत ज्यादा

बहनों, अब आपा बात करा धूप से बचाव की। यानी कि धूप इतनी तेज हुए कि कई बार की हुए कि त्वचा जलन लाग जावे, या आप बोला के जो शनबरन यानी कि सूर्य की जो धूप है बिकी जो किरण है वह ज्यादा हानिकारक हुए। तो आपा ज्यादा देर अगर धूप में रहवा और त्वचा अगर ढकेड़ी नहीं हुए है तो इससे क्या है कि कई बार अपनी त्वचा जलन लाग जावे, बढ़ जावे और काली पड़ जावे, कई बार चकता भी बन जावे। तो जो धूप रो कहर है वो तो आप देख रहे हैं, सूर्य जो आपरी पूरी सेना के साथ आ रहे है, सुबह की जकी धूप हुए वह अपना खातिर विटामिन डी रो काम करे। यानी कि सुबह सुबह अगर आप धूप लेवा तो वह अपने लिए फायदेमंद हुए। लेकिन जिया जिया दिन चढ़ियो बिया बिया धूप अपनी त्वचा रखातिर और अपने शरीर रखातिर हानिकारक हो जावे। सूरज री हानिकारक पैरा बैंगनी किरणा र अत्यधिक संपर्क में आणशू त्वचा रो लाल होनो, जलनो और सूजन आनो जिसी समस्या अपन देखने मिला है, भी साथ साथ एलर्जी भी कई लोगों रो हुए है। तो इन ही सनब्रन कहो जावे है, या सिर्फ एक अस्थायी जलनी को नहीं हो बल्कि त्वचा री कोशिकाओं और शरीर ने पहुंचाने वालों एक बहुत बड़ो नुकसान भी हुआ है। यदि इसी कदे समस्या हो जावे तो जल्दी सु राहत पाना

ग्वार पाठरो जिको रस होवे है या जेल होवे है बिको जो रस है वो लगानो चाहिए या फिर दही लगानो चाहिए। फपोड़ा अगर कई बार पड़ जावे तो खूब सारो जो पानी है वो पीणो चाहिए और धूप से बचनो चाहिए कि आपा जद भी बाहर जावा तो सूती कपड़ा रो जो उपयोग जरूर करा और मुँह ने हाथ ने ढककर ही बाहर जावा ताकि अपने कोई जो समस्या है वह नहीं आवे। जठे भी चमड़ी लाल हो जावे जलन लागे बैठे सूती कपड़ो ठंडा बर्फ में जिया ठंड बर्फ को जो पानी हुआ ठंडो पिसे कमाई ने 10-15 मिनट रखनो चाहिए। ठंडा पानी सु नहानो चाहिए और सीधी बर्फ चमड़ी पर कदी ही नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आ कई बार के है कि अपना फायदे की जगह नुकसान भी करे है।

जो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखा तो आप कई सारी जिकी समस्या है वह खत्म हो जावे। एक साथ साथ ठंडो दही या मलाई लगान शु भी चमड़ी की जलन है वह कम हुए है। जली लागे बैठे यानी कि जो छाला पड़ जावे तो बाण भी हाथा सू फोड़न नहीं चाहिए। बाण के कि एकदम धीरे धीरे अपना आप ही ठीक होने देना चाहिए। धूप में रहने से शरीर में पानी की कमी हो जावे यानी डिहाइड्रेशन हो जावे। ये वास्तव

बारह जमा जद मोटो रुमाल या आपा जो स्कार्फ हुआ वो बांध के ही जमा। बिक साथ साथ सनस्क्रीन लोशन है वो जरूर अपन लगाना चाहिए अच्छी कंपनी को। और आपा एलोवेरा जेल

जलती त्वचा है बा ठंडी हो जाएगी, और जो लाल हो रही है या जलन हो रही है बा जलन भी कम हो जाएगी। घर में आपा जो ग्वार पट्टो है यानी कि एलोवेरा है वो हर जगह अपन मिल जावे, आसानी से उपलब्ध भी हो जावे, और यो बहुत ज़्यादा ठंडो हुआ है और चमड़ी ने बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी भी करा है, तो एलोवेरा को रस को उपयोग आपा ने जरूर करना चाहिए। और आपने जो जद भी बाहर निकला तो खूब सारो पानी पीवा, और पानी की बोतल आपने साथ रखा, बिक साथ साथ सूती कपड़ा सु मुँह ढक, अब शरीर ने पूरी तरह से ढक कर ही आपा धूप में निकला।

जगह पर है, ये आधुनिक तकनीकी से आंकी जो खेती है बा करी जावे। और तरबूज अपने गर्मियों में अपन ठंडक ठंडक प्रदान करे, और इसो फल हुआ जिको में ढेर सारो मिनरल हुए, तरल पदार्थ हुए जिको अपने शरीर ने ठंडक प्रदान करे, वो इसो फल है जो आसानी से और कम दामा में अपन उपलब्ध हो जावे। तो इरो इस्तेमाल अपन कद करनो चाहिए। इरो जो खान रो सबसे अच्छो टेम सुबह, यानी कि सुबह को टेम हुए या फिर दोपहर को टेम हुए, शरीर ने ऊर्जा और भरपूर हाइड्रेशन यानी पानी की कमी ने दूर करे। इन भोजन करण से 1 घंटा पहले आप ले सका हाँ, या भोजन करण रे 2 घंटा बाद ही इन खानो चाहिए। और तरबूज रो सेवन करता टेम कुछ बातों रो आपा ध्यान रखा कि सुबह रो टेम नाश्ता रूप में या सुबह खाली पेट तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी दूर हो जावे है, और ये बहुत ज्यादा अच्छो भी मान्यो जावे है। तरबूज रात में बिल्कुल भी नहीं खानो चाहिए, क्योंकि रात में अगर आपा खावा तो इसे एक तो अपने पाचन तंत्र पर इको गलत प्रभाव पड़े, और साथ ही

इस सुखी है कि पेट में एसिडिटी और अपच को कारण भी वो बन जावे है। तो यो आपन रात ना अगर आप तरबूज खावा हाँ तो वो आपन लाभ की बजाय नुकसान ही पहुंचाओगो। और तरबूज खाने रे तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीनो चाहिए, इस पेट में भारीपन या दर्द होने लग जावे। और आपा इको प्रयोग अगर सही तरीके से और स्वास्थ्य के लिए करा तो इससे बहुत ज़्यादा जो कई सारी जो समस्या है वह भी खत्म हो जाए, जैसे कि मधुमेह की समस्या है और वजन में जो नियंत्रण करने में भी जो तरबूज है वो बहुत ज़्यादा लाभ

और तरबूज है वो अपना स्वास्थ्य में एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे एक बढ़ोतरी करे, स्वास्थ्य ने अच्छो रखे और जो पानी की कमी है वो दूर करे। तो एक खाना को टेम है वो अपन पता होना चाहिए और ये जो खाना को तरीको है वो भी अगर अपन पतो हुए तो अपन ने लाभ दे होगा। बल्कि अगर आप इसको गलत तरीके से गलत टाइम पर इस्तेमाल करा तो अपन नुकसान भी पहुंचा सके।

अब बात करा छुट्टियां और सदुपयोग की, कि आपा अगर कामकाजी महिला बहना है तो बन टेम कौन मिल रहा जब वह बाहर जाके काम करे, लेकिन अब छुट्टियां पड़ रही है तो आपा पूरा अपना जो शौक है वह पूरा कर सका हाँ, नया कौशल भी सीख सका हाँ और परिवार के साथ समय भी बिता सका, साथ ही साथ अपने बिहार जा सका हाँ और माता पिता से मिल सका हाँ, और साथ ही साथ जो छुट्टियां को जो एक इंजॉयमेंट है वो कर सका हाँ और मानसिक शारीरिक रूप से तरोताजा भी हो सका, क्योंकि भाग दौड़ का मायने आप पूरे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट सी जो हो रही है, बिस आपा ने कुछ समय के लिए ब्रेक मिल रही है और आपा जब आगे आने वाला टाइम जब आप काम करांगा तो अपनी दैनिक दिनचर्या से ब्रेक देकर भविष्य के लिए ऊर्जावान भी आपा ने छुट्टियां बनावे है। तो एक तो नया कौशल और ज्ञान को जो अर्जन है वो आपा कर सका हाँ, कि जिया कि ऑनलाइन कोर्स ले सका हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सीख सका हाँ, फोटोग्राफी सीख सका हाँ और कई जो अपने विदेशी भाषा है वह भी आपा सीख सका, क्यों आपा ने टेम है अपनी पसंद की प्रेरणादायक किताबा पढ़ सका हाँ और एक साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी आपा ध्यान रख सका, अपना शरीर ने फिट रख सका हाँ। आपा और दिन तो बहाना कर जावा माने टाइम कौन मिल रहा है, लेकिन छुट्टियां का जो टाइम है भी आपा सुबह उठ के भी कर सका हाँ, खुद को फिट रखने के लिए जल्दी उठ के रनिंग की आदत डाल सका हाँ, योग कर सका हाँ, भी के साथ साथ ध्यान और आध्यात्मिकता की तरफ भी आपा जुड़ सका हाँ, जिससे आपने जो एकाग्रता है वह सही हो जावे और ध्यान करने से अपनों जो एक एक तरीके से कि वे कि तनाव है स्ट्रेस है वो दूर हुए है, भी के साथ साथ पेंटिंग संगीत कुकिंग या गार्डनिंग यानी कि पेड़ पौधा लगाना को शौक है भी के लिए भी आपा समय दे सका हाँ, डायरी लिखन री अगर आपा ने शौक है तो आपा अपना विचार और दिन भर री गतिविधियां लिखकर अपनी यादा ना आपा सहेज सका हाँ और परिवार के साथ कोई नई जगह ऐतिहासिक स्थल पर घूम सका ताकि अपना बच्चा जान सके और अपना इतिहास न देख सके और जो साहित्य है और संस्कृति है भी न जान सके, एक साथ साथ सामाजिक कार्य भी आपा कर सका हाँ, जिया कि कोई एनजीओ में जाके जरूरतमंदा की पढ़ाई या समाज सेवा में भी अपना योगदान है वो दे सका हाँ, घर पर रह के भी आपा कुछ नए वो सीख सका हाँ, कई यात्रा भी कर सका हाँ और अपना बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है तो बन आपा थोड़ा टाइम दे सका हाँ, ताकि बन को जो कमजोर पॉइंट है वह आपा देख सका और बन पूरी तरीके से ढंग से तैयारी करा सका, तो गर्मियां को जो वो आपा ने टाइम मिल्यो है ये टाइम को अपन या फोन देख रील देख गवाने से अच्छा है कि कुछ इसो करा जो अपने लिए लाभदायक भी हो, अपनी छुट्टियां भी अच्छी तरीके से बीत सके और आपा कुछ नयो है वो भी सीख सका और समय को सदुपयोग है वो भी कर सका।

को कौन सी बात को कठे किया प्रयोग करना चाहिए, कठे आपने किया बोलना चाहिए, कठे उठने बैठने होने चाहिए, कि आपने बड़ा बुजुर्ग का बराबर बैठ रहा आप बात कर रहे हैं, तो आपने बात करने का तरीको लहज जो है वो संयमित होना चाहिए, क्योंकि बात करने को तरीको ही आपने अच्छा बनावे, अपनी छवि ने अच्छी बनावे, प्रभावकारी बनावे और एक अच्छी अमिट छाप छोड़े, और अपनी जो बोली अगर अच्छी नहीं है तो भी आप नकारात्मक यानी कि लोगों की नज़र में आपनों जो प्रभाव है वो नकारात्मक भी हो जावे।

जिया कि आप बात करा आम की। आम एक बहुत ही बहुमुखी फल है जिसमें पक और कच्चा दोनों रूप में कई प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन पेय और स्नैक्स बना सका हाँ। आम से चटनी बना सका हाँ, अचार बना सका हाँ, मैंगो शेक बना सका हाँ, आम पन्नो बना सका हाँ, आम पापड़ और आइसक्रीम जैसी कई सारी चीजें है वह बना सका हाँ। अपने घर में हम देखा है कि हर घर में आम पन्नो बने बिक साथ साथ लू लाग जावे तो आम को जो जूस है यानी कि जो कच्ची कैरी है भी कच्ची कैरी ने उबाल और अगर पियो जावे तो पेट की गर्मी दूर हो जावे और हेजेस जैसी समस्या भी दूर हो है। पक्का आम से बनने वाली कई सारी चीजें जी हैं कि मैंगो शेक, मैंगो लस्सी और आम को जूस। आम के कतली भी बने हैं, आम को हलवो भी बना है और मैंगो केक भी बना है और भी के साथ साथ आम की आइसक्रीम, मैंगो कुल्फी और इसका कई सारी चीजें भी बना है। आम पापड़, सूखा मैंगो भी बना है, जैम भी बना है। बिक साथ साथ कच्ची कैरी की अगर आप बात करा तो अपना खट्टा स्वाद के लिए इन जानो जावे है और गर्मिया में राहत देने के लिए व्यंजन भी कई सारा इस बना है। कच्चा आम को तिखो और मसालोदार अचार भी आप बना सका हाँ, जिया तेल आलो, नमक आलो, सूखो अचार जिया भी बना सका हाँ। आम पन्नो लू से बचने के लिए एक पारंपरिक पेय है वो अपनी दादी नानी बनाती आ रही है और आज भी अपने घर में बना है। बिक साथ साथ कच्चे आम और पुदीने की चटनी तो फेमस है ही, आप बनावा ही हाँ। और आम की लुंजी या खट्टी मीठी गुड़ या चीनी के साथ भी खट्टी मीठी की जो लुंजी है वह बनाई जावे है। और अमचूर पाउडर, सूखा आम को पाउडर और जिसे कि अंदर सेली आम की दाल भी आपा बनावा हाँ और इन्हें सुखा के एक अमचूर बना के आपा पूरी साल जब भी आपा यानी कि सब्जी बनावा जे सांगरी की सब्जी बनावे तो अमचूर है वो भी बिगमाए ने डालो जावे। तो बहनों अब आपने कार्यक्रम को समय है वो पूरा होने में है तो आपा अपनी बहना से लेवा सीख और करा बस अब शू राम राम।

0: भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
1: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में विजयपथ से गाना आप सुन रहे हैं। इसकी फरमाइश हमें भेजी है भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला झुंझुनू से। इनके साथी हैं महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंद्र बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर झुंझुनू से, राजा नंदवाणी, रजत रोहित केशव, मुकुल मनीष, सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी नई सड़क चूरू से। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल, गुदड़ी बाजार चूरू से, राकेश कुमार दुधवा मीठा से, अरविंद खारड़िया लादड़िया से, निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी चेतन गोंदिया महाराष्ट्र से। और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से, राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, इनकी माताजी द्वारका बाई सेन, इंदौर लिमोबी वादी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा बाई चौधरी। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद का ये गीत।

ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों की ये फरमाइश का कार्यक्रम है मेल बॉक्स आपके लिए। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जहां हमें जिन दोस्तों ने उस फरमाइश को भेजा है उनके नाम आपके साथ शेयर करते हैं। चंडीगढ़ सिटी से इस गीत की फरमाइश भेजी है सतीश अनेजा विमला अनेजा जी ने। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल भी लिखते हैं। डोरेगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये

मेल्स के जरिए फिल्मी गीतों की फरमाइशों का एक कार्यक्रम है मेल बॉक्स, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त कनिष्क।

वारिस फिल्म से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले ने। इन्होंने ये फरमाइश भेजी है सिद्धार्थ नगर दुरियापुर बाबली से। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर। गांव जाखोज से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है

गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। तो आइए सुनते हैं अपने इन साथियों की पसंद का फिल्म वारिस का ये नगमा।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेल बॉक्स और इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आज कनिष्क। चलिए अगली फरमाइश की ओर चलते हैं। प्रेम कहानी से फूल आहिस्ता फेंको, इस गीत की फरमाइश हमें मिली है। लिखते हैं गुवाहाटी आसाम से हरिन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, कंचन, कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक बलबीर सिंह। इन सभी ने सुनना चाहा है ये गाना।

प्रोग्राम मेल बॉक्स में आपकी ईमेल्स के जरिए मिलती है हमें आपकी फरमाइश, और वो फरमाइश हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। बहुत से साथी और बहुत सारे गाने, लेकिन सीमित समय। बस कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शामिल कर सकें गानों के साथ।

पान खाए सैया हमारो। इस फिल्म की, इस गीत की हमें फरमाइश मिली है फजिल का पंजाब खेड़ा परिवार लिखते हैं, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी, बठिंडा रोड, मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित तानिया, बोरखेड़ा, पित्रामल जिला, उच्चन उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतन नहाटा, मोरटक का माफी जिला खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवकिशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम कुमारी की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का, अपने इन साथियों की पसंद का ये नगमा।

साथियों आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जब मेल भेजते हैं तो रिपीटेशन ना कीजिए। आप जो मेल भेजते हैं वो एक मेल ही सफिशियंट है, पर्याप्त है। आप ज़्यादा मेल भेजते हैं उससे ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए बेटर यही है, अच्छा ऑप्शन यही है कि आप एक ही मेल भेजें। ज़्यादा मेल भेजने से क्या होगा, आप एक ही नाम से 5 मेल भेज दीजिए, 10 मेल भेज दीजिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ एक ही मेल भेजिए, अगर आप एक मेल भी भेजते हैं तो उतना भी पर्याप्त है।

साथियों, पूरा गाना तो शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन जितना भी है इस गीत को सुनना चाहे लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी ने, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, इसी गीत की फरमाइश हमें भेजिए मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और पूजा परिहार, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है

एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की यह प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की ये दूसरी सभा आरंभ होती है।

जी दोस्तों, इस गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युववाणी की शुरुआत। और आज के इस युववाणी में मैं हूं आपकी रेडियो साथी डिंपल शर्मा। प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है सोमवार और सोमवार को होता है हमारा खास सेगमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत। जी बिल्कुल दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जो समर्पित है प्रेरणा, सकारात्मकता और जीवन में आगे बढ़ने की उस अद्भुत ऊर्जा को जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है। जीवन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें कभी सफलता हमारा स्वागत करती है तो कभी चुनौतियां हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। ऐसे समय में हमें जरूरत होती है किसी ऐसे मार्गदर्शक की, किसी ऐसी कहानी की जो हमें विश्वास दिला सके कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास जो है, इसके बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं आज का खास सेगमेंट हमारी प्रेरणा स्रोत। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों उन महान व्यक्तियों के जिन्होंने अपने संघर्ष, समर्पण और अथक प्रयासों से समाज में एक नई जो पहचान है वो बनाई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और दुनिया को ये दिखाया कि यदि इरादे आपके मजबूत हों तो हर मुश्किल जो है वो रास्ता आसान बना देती है। और दोस्तों, अगर हम प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा जो है वो केवल बड़े बड़े मंचों या इतिहास की किताबों में ही नहीं मिलती बल्कि उन लोगों के जीवन में भी मिलती है जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण उपलब्धियां जो है वो हासिल की है। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि सपने जो है वो देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना। और वे हमें बताते हैं कि असफलता जो है वो अंत नहीं है बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर आज के युवा साथियों की, अगर मेरे युवा साथी जो है उनकी बात करूं, तो युवा साथी जो है वो भारत के भविष्य हैं और उनके सपने, उनकी सोच और उनकी ऊर्जा जो है वो आने वाले कल की दिशा तय करती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि युवाओं को सही प्रेरणा मिले, ऐसे आदर्श मिले जिनके जीवन से वो सीखें और सीख कर अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। हमारे प्रेरणा स्रोत जो है वो हमें यही सिखाते हैं दोस्तों कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि हमारे भीतर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रेरणा की इस विशेष यात्रा को। और इसमें हम बहुत सारी ऐसी ढेरों बातें जानेंगे जो हमारे जीवन में आती है, ढेरों चुनौतियां जो हमारे जीवन में आती है, बस जरूरत होती है हमें डटकर खड़े रहने की, पूरे अनुशासन के साथ, आत्मविश्वास के साथ और अपने सपनों को पूरा करने की उस जिद के साथ हमें खड़ा रहना होता है दोस्तों और आगे बढ़ना होता है। और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, और हमारे दोस्तों से, हमारे परिवार के सदस्यों से या उन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते हुए ही वो सफलता की ओर बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। ऐसे लोगों की हम बातें करते हैं और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो किसी पुस्तक से या हमारे आसपास का जो वातावरण में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, हम अपने आप से प्रेरणा ले सकते हैं। जरूरत होती है हमें सीखते रहने की। तो खास सेगमेंट में हम ढेरों बातें करेंगे दोस्तों, फिलहाल ये चलते हैं आपको।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, खास सेगमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत में हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल युवाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और हमारा आज का विषय है कि दूसरों से नहीं स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें। और बिल्कुल दोस्तों, आज का जो दौर है वो प्रतिस्पर्धा का दौर है और हर जगह तुलना दिखाई देती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में हमारे जो नंबर हैं उनको लाने की कि ज़्यादा नंबर हमारे आने चाहिए उसकी तुलना, कॉलेज में प्रदर्शन की तुलना, नौकरी में उपलब्धियों की तुलना और सोशल मीडिया पर जीवन शैली की तुलना, ऐसा लगता है कि मानो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी दौड़ में शामिल है और लगातार दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या वास्तव में सफलता का अर्थ जो है वो केवल दूसरों से आगे निकल जाना है? और यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दूसरों से तुलना हमें कुछ समय के लिए प्रेरित तो कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये जो है वो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर भी कर सकती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर, अधिक सफल या अधिक अनुभवी जो है वो हमें मिलता रहेगा। और यदि हम अपनी खुशी और आत्मविश्वास को दूसरों की उपलब्धियों से जोड़ देंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और यही कारण है कि जीवन का सबसे स्वस्थ और प्रभावी जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा जो है वो करें। स्वयं से प्रतिस्पर्धा का अर्थ यही है दोस्तों कि हम हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करें। ये देखना कि आज हम कल की तुलना में क्या नया सीख पाए, क्या सुधार कर पाए और अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं तब हमारा ध्यान जो है दूसरों की कमियों या सफलताओं पर नहीं होता बल्कि अपनी प्रगति पर केंद्रित होता है। तब हम दूसरों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि

कल्पना कीजिए कि एक दौड़ हो रही है और आप उसमें एक धावक है, और यदि दौड़ते समय आपका पूरा ध्यान जो है वो केवल दूसरे धावकों पर रहेगा तो संभव है कि आप अपना संतुलन खो देंगे। लेकिन यदि आपका जो ध्यान है वो आपकी गति, आपकी क्षमता और अपने लक्ष्य पर रहेगा तो आपके सफल होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जीवन भी कुछ इसी तरीके का ही है दोस्तों। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को अधिक समय लगता है, और इसलिए अपनी यात्रा की तुलना जो है वो किसी और की यात्रा से करना उचित नहीं है। आज सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम दूसरों की उपलब्धियां जो है वो देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, उनकी सफलताएं देखते हैं, और कई बार ये भूल जाते हैं कि हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और जो संघर्ष है वो छिपा होता है। जब हम लगातार तुलना करते हैं तो हमारे भीतर जो है वो हीन भावना, तनाव और असंतोष पैदा होने लगता है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, जबकि वास्तविकता दोस्तों यही होती है कि हम अपनी ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं। जीवन जो है वो कोई दौड़ नहीं है जिसमें केवल एक व्यक्ति विजेता बनता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति का लक्ष्य, मार्ग और मंजिल जो है वो अलग होती है। और स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने का सबसे बड़ा लाभ यही है दोस्तों कि हम जो है वो निरंतर सुधार की ओर प्रेरित होते रहते हैं, और हम जो है वो हर दिन स्वयं से ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ, क्या मैंने कोई नई चीज सीखी, क्या मैंने अपनी किसी कमजोरी को थोड़ा कम किया, क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा। ये जो सवाल हैं वो अगर आप अपने आप से करेंगे, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हर दिन जो है आप में बेहतरीन बदलाव होंगे। और यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ होता है दोस्तों तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महान खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों और उद्यमियों की सफलता का रहस्य भी यही रहा है। उन्होंने अपना अधिकांश जो समय है वो दूसरों से तुलना में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाया। जब कोई खिलाड़ी नया रिकॉर्ड बनाता है तो वो केवल दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी पिछली उपलब्धि से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और वो जो है जो स्वयं का बेहतर जो संस्करण है वो बनने की कोशिश करता है। और यही जो सोच है दोस्तों वो हमें भी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये जो सोच है वो हमें आगे बढ़ाती है। और अगर हम आत्मविकास की बात करें तो आत्मविकास की जो यात्रा है वो छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होती है। यदि आप रोज केवल 1% भी बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो एक वर्ष बाद आपके भीतर जो है अद्भुत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और एक बेहतर किताब पढ़ना, एक नया कौशल सीखना, समय का बेहतर उपयोग करना, अपनी गलतियों से सीखना और व्यवहार में सुधार लाना, ये सभी जो है वो स्वयं से प्रतिस्पर्धा के ही उदाहरण है। और ये प्रतिस्पर्धा किसी दबाव से नहीं बल्कि आत्मविकास की इच्छा से जन्म लेती है। और दोस्तों जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं तब असफलता भी हमें निराश नहीं करती है, क्योंकि तब हमारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं बल्कि सीखना और आगे बढ़ना होता है। और यदि आज कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो हम उससे सीखकर कल बेहतर प्रयास कर सकते हैं, और यही जो मानसिकता है वो हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। और युवाओं के लिए ये जो बात है कि आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज का युवा अनेक अवसरों और चुनौतियों के बीच खड़ा है, और यदि वह लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो उसका ध्यान जो है वो अपनी क्षमता को पहचानने से हट जाएगा। लेकिन यदि वो स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा तो वो अपने वास्तविक प्रतिभा को पहचान पाएगा और अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां जो है उन तक पहुंच सकेगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता आपका कल जो है वो आपका आज ही तय करता है। रोज आपको नया सीखना है, आप आज अपने कल से बेहतर बन सकते हैं तो आप जीत रहे हैं। यदि आपने अपनी किसी कमजोरी को सुधार कर उस पर जीत हासिल कर ली तो आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने हार मानने की बजाय प्रयास जारी रखा तो आप जीत रहे हैं, और यदि आपने सीखना बंद नहीं किया है तो आप जीत रहे हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है दोस्तों कि इसमें सुधार की कोई सीमा नहीं है। हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं और स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज हम ये संकल्प ले दोस्तों कि हम अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे, हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेंगे लेकिन अपनी पहचान स्वयं बनाएंगे। हम हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। हम अपनी ऊर्जा जो है तुलना में नहीं विकास में लगाएंगे। हम अपनी कमियों को पहचानेंगे, उन्हें सुधारेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सच्ची सफलता दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं बल्कि स्वयं को लगातार बेहतर बनाने में है। और जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना सीख जाते हैं तब जीवन तनाव की दौड़

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया होगा। किसी के पास संसाधनों की कमी होती है तो किसी को अवसर नहीं मिलते, तो किसी को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सफलता और असफलता का अंतर जो है वो केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उन परिस्थितियों को देखने के नजरिए में होता है। परिस्थितियां नहीं, हमारा दृष्टिकोण जो है वो ही हमारा भविष्य तय करती है। जब दो व्यक्ति एक ही चुनौती का सामना करते हैं तो एक जो है उसे अपनी हार का कारण मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बना लेता है। और यही जो है दृष्टिकोण का अंतर है। हमारे देश के अनेक महान व्यक्तियों ने सीमित साधनों में रहते हुए भी बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल की। उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच आपकी सकारात्मक हो और आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती है। अगर हम युवा साथियों की बात करें तो युवा जो है अवस्था जो सपनों की उम्र होती है, युवा अवस्था में बहुत से सपने जो हैं वो हम देखते हैं, लेकिन ये वह समय भी होता है जब व्यक्ति सबसे अधिक तुलना, दबाव और अनिश्चितताओं का सामना करता है। परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिलना, नौकरी की चिंता, करियर को लेकर असमंजस और जीवन में आने वाली अन्य जो चुनौतियां हैं वो कई बार हमें निराश कर देती हैं। ऐसे समय में हमें ये याद रखना होता है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो हमारा अंतिम भविष्य नहीं है। दृष्टिकोण जो है वो हमें सिखाता है कि हर समस्या के भीतर जो है एक संभावना छिपी होती है, और यदि हम केवल कठिनाई जो है उसी को ही देखते रहेंगे तो अवसर हमें दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन यदि हम सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखेंगे तो वही कठिनाई हमें और भी ज्यादा मजबूत बना देगी दोस्तों। और अगर आज की दुनिया जो है उसकी बात करें तो दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए अवसर और नई चुनौतियां हर दिन सामने हमारे आ रही है। ऐसे समय में सफल वही होगा जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यही है कि जो समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका अर्थ ये भी है दोस्तों कि समस्याओं का सामना जो है वो आत्मविश्वास और समाधान की सोच के साथ जो है वो किया जाए। इसका जो निवारण है वो हम करें जब हम विश्वास रखते हैं कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे

बढ़ सकते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों, जीवन में कई बार असफलता हमें मिलती है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हमारी जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। असफलता केवल यह बताती है कि जो सफलता है वो पाने के लिए अभी कुछ और सीखना बाकी है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है वही अंततः सफलता तक भी पहुंच पाता है। और एक सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो वो केवल रिश्तों को ही बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें दूसरों की अच्छाइयों को देखने, सहयोग करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा भी देता है। ऐसे लोग न केवल स्वयं आगे बढ़ते हैं जो ये दृष्टिकोण रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर जो है वो देते हैं। यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो आप उससे मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि उसे एक शिक्षक की तरह देखिए। सोचिए कि वह आपको क्या सिखाना चाहती है। शायद वही चुनौती आपकी पहले से अधिक मजबूत, समझदार और सफल आपको बनाने के लिए आई हो। याद रखिए हमेशा कि परिस्थितियां जो है हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है वो हमेशा हमारे हाथ में होता है, और यही दृष्टिकोण हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर आप निराश हो जाएंगे, आप हार बैठेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं हों, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करें। क्योंकि जब सोच बदलती है तब जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तब भविष्य भी बदल जाता है। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आपका दृष्टिकोण है वो आप सही रखें, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है वो आपका भविष्य तय कर सकता है। आपकी परिस्थितियां ये सब तय नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप परिस्थितियों को ही देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा संसाधनों की कमी लगेगी, कोई ना कोई बहाना जो है वो आपके सामने आता रहेगा। लेकिन उसी परिस्थितियों को आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखेंगे कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो आगे नहीं रहनी चाहिए, इससे बेहतर मैं बनूंगी, इससे बेहतर मैं कुछ करके दिखाऊंगी, तो आप जो है वो अपना भविष्य और उज्जवल कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हमेशा आपको आपका दृष्टिकोण जो है वो सही रखना चाहिए। चीजों को जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सभी जो भी चीजें हैं उनको देखने के भी पहलू दो होते हैं। अब आपको तय करना है कि किस पहलू पर आप प्रभाव ज्यादा डालते हैं, किस दृष्टिकोण के साथ आप चीजों को देखते हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि आप कितना आगे बढ़ पाते हैं या कितना पीछे चले जाते हैं। तो तय आपको करना है दोस्तों कि आपका दृष्टिकोण आपको किस तरीके से रखना है, कैसे अपने सपनों तक पहुंचना है, कैसे जो है रास्ते जो है आने वाले उनमें जो भी कठिनाइयां आएंगी उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए, उन समस्याओं का समाधान करते हुए, डटकर खड़े रहते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। और इसी तरीके से कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लिए चलते हैं आपको एक

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: दोस्तों, खास सेगमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत में हम बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने दृष्टिकोण को सही रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। असफलताओं से आपको नहीं डरना है और आगे बढ़ते रहना है। और खास सेगमेंट में हम ढेरों जो आपको प्रेरणा दे सके ऐसी बातें लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जानकारियाँ जो है वो भी आपके लिए लेकर आते हैं। और इसी के साथ आज हम आपको लेकर चलेंगे दोस्तों उस धरती की ओर जहां दूर दूर तक सुनहरी रेत, रंग बिरंगी संस्कृति, मधुर लोकगीत और अद्भुत जो जीवन शैली है वो एक अनोखी पहचान बनाती है, यानी कि मरुभूमि का जीवन और उसकी लोक संस्कृति के बारे में। जब भी मरुभूमि का नाम हमें सुनाई देता है तो हमारे मन में विशाल जो रेतीले टीले हैं वो आते हैं, तपती धूप और दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान उभर आता है। लेकिन मरुभूमि केवल रेत का विस्तार नहीं है दोस्तों, ये साहस, संघर्ष और सांस्कृतिक समृद्धि की एक जीवंत मिसाल है। और यहाँ का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां जो है वो भी इंसान के उत्साह और रचनात्मकता को रोक नहीं सकती है। राजस्थान का थार मरुस्थल विश्व के जो सबसे अधिक आबादी वाले मरुस्थलों में से एक माना जाता है। और यहाँ का वातावरण कठोर है, गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और पानी की जो उपलब्धता है वो सीमित रहती है। फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उनके जो जीवन को इस प्रकार उन्होंने ढाल लिया है कि वे इन चुनौतियों के बीच भी खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हैं। मरुभूमि के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनका धैर्य और संघर्षशील स्वभाव है। पानी की हर बूंद का महत्व समझने वाले ये लोग वर्षों से जल संरक्षण की जो अनूठी परंपराओं को अपनाते आए हैं, कुएं, टांके, बावड़िया और वर्षा का जो जल संचयन है उसकी पारंपरिक तकनीकें इस क्षेत्र की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। और श्रोताओं, मरुभूमि का जो जीवन है वो जितना कठिन है उसकी संस्कृति उतनी ही रंगीन और आकर्षक भी है। जहाँ चारों ओर सुनहरी रेत दिखाई देती है वहीं लोगों की वेशभूषा चमकीले रंगों से सजी होती है। महिलाओं के रंग बिरंगे घाघरा, ओढ़नी और पुरुषों की आकर्षक

शक जो पगड़ियां हैं वो रेगिस्तान की सादगी में रंगों की नई दुनिया रच देती है। राजस्थान की लोक संस्कृति का सबसे सुंदर पक्ष उसका लोक संगीत है। यहाँ के लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वे लोगों के जीवन भावनाओं, संघर्षों और परंपराओं की कहानी भी कहते हैं। दोस्तों, मांड, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम जैसे जो लोकगीत हैं वो आज भी दुनिया भर में राजस्थान की पहचान बने हुए हैं। लोक संगीत के साथ साथ यहाँ के लोक नृत्य भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घूमर, कालबेलिया, चरी और जो भवाई जैसे नृत्य हैं वो न केवल कला का प्रदर्शन करते हैं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा को भी अभिव्यक्त करते हैं। इन नृत्यों में लोक जीवन की झलक, उत्सव की खुशी और परंपराओं का जो सम्मान है वो भी दिखाई देता है। मरुभूमि के जीवन में ऊंट का विशेष महत्व है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और सदियों से ये जो है वो परिवहन, व्यापार और आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। कठिन रास्तों और लंबे सफरों में ऊंट ने लोगों का सच्चा साथी बनकर उनका जो साथ है वो दिया है। राजस्थान के मेले और उत्सव भी मरुभूमि की संस्कृति को जीवंत बनाते हैं। इन आयोजनों में लोक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है और स्थानीय हस्तशिल्प जो है उसको बढ़ावा मिलता है। और ये केवल उत्सव नहीं होते हैं दोस्तों बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक संरक्षण का जो माध्यम है वो भी होते हैं। साथ ही साथ मरुभूमि की संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अतिथि सत्कार। सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ के लोग जो हैं अपने मेहमानों का स्वागत पूरे दिल से करते हैं। पधारो हमारे देश केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि दोस्तों राजस्थान की आत्मा और संस्कृति का परिचय है। मरुभूमि का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यहाँ के लोगों ने कठिन वातावरण को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपनी पहचान और शक्ति में बदल दिया। आज जब दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है तब भी राजस्थान की लोक संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। नई पीढ़ी पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और लोक विरासत जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसे संरक्षित करना भी जो है वो हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए हम मरुभूमि के लोगों के संघर्ष, उनकी संस्कृति और उनकी जीवन शैली से प्रेरणा ले दोस्तों और ये समझें कि खुशियां जो है वो केवल संसाधनों में नहीं बल्कि जीवन को देखने के नजरिए में होती है। राजस्थान की मरुभूमि हमें ये संदेश देती है कि कठिनाइयों से लड़कर, कठिनाइयों के बीच रहकर जो जीवन के रंग है

जी दोस्तों, खास सेगमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत में एक छोटी सी कहानी जो है उस पर हम बात करेंगे। एक छोटे से कस्बे में एक कारीगर रहता था और उसका काम जो है मिट्टी के दिए और बर्तन बनाना था। त्योहारों के समय तो काम अच्छा चल जाता था, लेकिन बाकी दिनों में परिवार का जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से होता था। और उस परिवार में एक बेटी थी जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा अपने स्कूल में अच्छे अंक लाती थी। बेटी का सपना था कि वो शिक्षिका बने और अपने जैसे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाए, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी दिखाई देती थी। कई बार उसे लगा कि शायद उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सुबह घर के काम में अपने माता पिता की मदद करती, स्कूल जाती और शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने लगी। कई बार बिजली नहीं होती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती, और उसके पास महंगे साधन जो है वो नहीं थे, लेकिन सीखने की इच्छा जो है वो काफी मजबूत थी। समय बीतता गया, उसने मेहनत जारी रखी और छात्रवृत्ति हासिल कर ली। आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास कर ली, और जिस लड़की के सामने कभी पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी वही आज एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने मिट्टी को आकार देकर सुंदर दिए बनाए हैं और आज आपकी मेहनत जो है उसी ने मुझे भी एक नई पहचान दी है। और दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है वो हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी जो है वो सपनों को नहीं रोक सकती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत सच्ची हो और हौसले आपके मजबूत हो तो साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण जो सफलता है वो हासिल की जा सकती है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर का विश्वास होता है, और जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो आती हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें मेहनत तो उतनी करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जो असफलताएँ हैं वो भी आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि संसाधनों की कमी जो है वो भी हमारे पास होती है, लेकिन इसको बहाना बनाने से अच्छा है कि आप इसको

आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बना लें, कि किस तरीके से संसाधनों की कमी जो है उसके साथ रहते हुए भी हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है दोस्तों, और किसी भी जो सफल व्यक्ति है उसकी ओर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है, और वो जो संघर्ष है उस संघर्ष को करते हुए ही वो आगे बढ़े हैं और अपनी मंजिल को पा सके हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने सपनों को जी पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बस ज़रूरत होती है हमें डट कर खड़े रहने की, हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं उनको पहचानने की, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर किस तरीके की संभावनाएं हैं वो हमें खुद को पहचाननी होती है दोस्तों। क्योंकि जीवन में अक्सर जो सफलता है, अवसर और प्रेरणा की तलाश बाहर की दुनिया में हम करते रहते हैं, जबकि हमारे अंदर ही सब कुछ होता है। हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और सोचते हैं कि शायद उनमें कोई विशेष गुण था जो हम में नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? सच्चाई ये है दोस्तों कि हर व्यक्ति जो है अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि कुछ लोग अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं और उन्हें निखारने का प्रयास जो है वो करते रहते हैं, जबकि कई लोग अपनी ताकत को अपनी पहचान ही नहीं बना पाते हैं। और दोस्तों अक्सर जो है वो हम अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर जो खूबियां हैं उनको हम देख ही नहीं पाते। और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम दूसरों से तुलना करते हुए ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो ये नहीं है, ये कमी है, तो ये जो है वो हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि सफलता जो है वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही बनी हुई है। लेकिन हम देखेंगे तो जिन भी लोगों ने दुनिया में बड़ा बदलाव किया है दोस्तों, तो वो कभी भी साधारण नहीं थे। और जैसा कि हमने बात की कि उन्होंने असाधारण बनाना उनकी अपनी क्षमताओं पर जो विश्वास है वो उन्होंने किया, तो वो आगे बढ़ते रहे। अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है दोस्तों, तब वह जो रास्ता है वो उस पर चल पड़ता है, और जहाँ पहले उसे केवल कठिनाइयाँ दिखाई देती थी वह चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखता है। और हर युवा साथी के बीच में जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो ऊर्जा है वो रचनात्मकता है, सीखने की क्षमता है और कुछ नया करने का साहस है, वो उनमें भरा हुआ है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि स्वयं को समझे, अपनी रुचियों को पहचाने और अपने प्रतिभा को विकसित करने का प्रयास करें। जीवन में कई बार असफलताएं भी आती है, लेकिन असफलता दोस्तों ये तय नहीं करती। और ऐसा हम बार बार कहते हैं कि असफलताएं जो है वो आपकी जो भी क्षमताएं हैं उनको तय नहीं करती है कि हम क्या बन सकते हैं। वो केवल हमें ये सिखाती है कि हमें किस दिशा में और ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखता है वही आगे चलकर बड़ी जो सफलताएं हैं उनको भी प्राप्त करता है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सबसे बड़ी ताकत जो है आपके अंदर मौजूद है। आपको केवल उसे पहचानना है, उस पर विश्वास करना है, उसे सही दिशा जो है वो देनी है। जब आप अपनी संभावनाओं को पहचान लेते हैं तब कोई भी लक्ष्य जो है वो असंभव नहीं लगता है। हर लक्ष्य जो है वो हमें संभव लगने लग जाता है और हम अपने आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। हम अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और हर दिन अपने बेहतर स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत जो है स्वयं को पहचानने से होती है। हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम कितना जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कितना आगे हम बढ़ सकते हैं, हमारे खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे सपनों के बारे में हमारी सोच कैसी है, इन पर अगर हम हमारे मन में ही ये जो चीज़ें हैं उनके जवाब अगर हम ढूंढते हैं, इन सवालों के जवाब, तो दोस्तों हमें सही जवाब मिलता है कि क्या हम कर सकते हैं, हमारी ताकत कितनी है। तो अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए और अपने सपनों को

दोस्तों, अंधेरों से हमें नहीं डरना चाहिए क्योंकि वही हमें रोशनी का महत्व सिखाते हैं। मुश्किलों से हमें नहीं घबराना चाहिए क्योंकि वही हमारी ताकत बनते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। और जो व्यक्ति हर दिन सीखता है और आगे बढ़ता है, वही अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। खुद को इतना मजबूत हमें बना लेना चाहिए कि परिस्थितियां जो है वो हमें ना बदल सकें। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का जो प्रयास है वो हमें जारी रखना चाहिए क्योंकि जीत और जो हार है वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रयास करना जो है वो ही सच्ची सफलता है। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ही हम जो है हमारे जीवन में बेहतर बन सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा?

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण

अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। तदुपरांत 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक।

हम छह बजकर 40 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले जिले की चिट्ठी और छह बजकर 45 मिनट पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। चर्चा होगी इस माह के प्रमुख कृषि कार्यों के बारे में, साथ ही उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्रों पर भी चर्चा होगी और पॉली हाउस की उपयोगिता के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप सुन पाएंगे लोकगीतों

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम खेल जगत और 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे आप सुन पाएंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। अभी आपने जाना कार्यक्रम विवरण FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, महाभारत में लिखा गया है वृक्षों को काटना महापाप है और वृक्ष लगाना हितकारी है। हम अपने आसपास के स्थान पर स्वच्छता बनाए रखें। जहां भी हम रहें उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ

में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। इसमें आज आपने सुना बॉर्डर फिल्म में सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में इस गीत को। एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। तदुपरांत 6:30 पर

सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउं लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योगमंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98% शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋणप्रदानं वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथविक्रेतिजनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 5

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई, उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से इसका शुभारंभ किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया है कि किसानों को सस्ती उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वंचित किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ाना होगा। सही बुआई, रोग से बचाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाना समय की

0: रुपए डाला तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था, जरा सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे, और एक बैलेंस खाद का उपयोग। वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मिशन की शुरुआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 प्राथमिकता वाले अध्ययन और सहयोग के क्षेत्र पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का

0: 21 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इस पहल के जरिए 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने लाखों परिवारों को विश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने आज बालोतरा जिले का दौरा कर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। श्री साहू ने बालोतरा थाने का निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के बाद तैनाती कर नफरी की कमी को दूर किया जाएगा।
1: देखिए, पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी वो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस मुख्यालय का ध्यान वो उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी सरकार की पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इन पहलों के कार्यान्वयन में रुचि भी दिखाई है। बैठक के दौरान प्रदेश में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने भवन निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री भांबू ने कहा कि मंत्रालय ने राजस्थान के 7 डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनू भी शामिल है। प्रदेश में मध्य और पूर्वी जिलों में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश हो रही है। अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और सीकर जिलों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
2: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश व ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के

0: कहीं-कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले तीन दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की बढ़ोतरी हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गाँव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है। डिस्कॉम के एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु जिले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ

0: जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीजों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर दो दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीजों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर एस एन धोलपुरिया ने की। उन्होंने सीएमएचओ कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांवों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा, जिसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंच गौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नूवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यां माए राज्यसभारी 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनावरी अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटां सारू चुनाव फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश माए सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश माए आज खेत बचाओ अभियान शुरू करी चियो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गांव इनरी शुरुआत की नी। ई मौके वे कहो कि दुनिया भर माए खाद रो मोल दुणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया करावण ते किन्नो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार ए कार्ड बनाया जावेला। वे कहो कि अब खेती माए सही बुआई बीमारियां बचाओ और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेना वेला।
2: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उत्तर डाला तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रातेत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजना वारो फायदो पात्र किसाना ताई पुगावन रा खा

0: आवेला। ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीका काम लेवण ने बढ़ावो देवणो, किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवणो और पंचायत लेवल माथा जनता री भागीदारी तय करनो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा रिसर्वात कीनी। वह नई दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास रवारा माए राखी ची राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम माए इन रिसर्वात कीनी। इनरो मकसद पीवन रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन आबो हवा माए बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी ने समझदारी काम लेवन सरीखा हलका माए नुवी खोज ने बधावो देवनो है। कार्यशाला माए पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका रा बारा माए विचार करियो चाटियो है। ई मौके जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावन सारू एक करार माथे सही कीनी। राजस्थान समेत 10 राज्यों में राज्यसभा री 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना आज जारी कर दी रीची। इस आगे पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फेक्यो है। प्रदेश राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करियो जावनो है। इन सारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करिया जा सके है। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी सामी सवारे 11 दोपहर 5:30 बजे ताई दाखिल करिया जा सके है। नाम पानारी जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून न दोपहर 5:30 बजे ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटां री गिनती करी जावेला। ध्यान जोग है कि राजस्थान नु राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूविया आज 6 बरस पूरा फेक्या। साल 2020 माए आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत कीनी ही। इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला ने आसान कर्ज मुहैया करावनो है। योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली माए भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात कीनी। ई मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊं जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजनावां रे बारा माए चर्चा कीनी। पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रिया एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो। वे पुलिस वाला सागे मीटिंग कर मारी समस्यावां री जानकारी लीनी। श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों हुई जानकारी लीनी। ई मौके खबर नवीसा सागे बातचीत करता था काम वे कहो के जिला माए जरूरी साधना री पूर्ति बेगी करी जावेला। एडीजी कहो के पुलिस लाइन सारू जमीन आवंटन री कार्रवाई करती रिची है। श्री साहू कहो के पुलिस माए नुआ भर्ती हुआ कर्मचारियां री सिखावण पाछे तैनाती कर नफरी री कमी दूर करी जावेला।
1: कि पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी वो तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है पुलिस मुख्यालय का ध्यान वो उपलब्ध कराए। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि
0: होगी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पराई सुन सको हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास

0: राज्य सरकार कानियों कराया जा रहा नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करन रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो के प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल ग्राम रथ अभियान मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान चंदन वन माई भारत अर राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशां ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशां रा तौरों पिछाण मिली है। मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजां री खोज नीलामी प्रक्रिया पीवण रा पानी री उपलब्धता साफ सफाई पाणा तून जुड़ी परियोजनावां अर ऊर्जा हलका माए सुधारां रा बारा माए चर्चा करी जी। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोए जायजो लीनो। वे राज्य री स्कूलां माए विद्यार्थियों ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावण सारू अहलकारां रे लगातार जांच रा हुकम दीना। झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला। इन सारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो। इ मौके विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत रचेरा 7 डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावन रो फैसलो कीनो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव साके मनाईचियो। कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग फौजियां सामी आवण वाली चुनौतियां अरमारा निपटारा रा बारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए पहले वाला अर मौजूदा फौजी अर फौजियां रा परिवार वाला शामिल थिया। अरबे मौसम प्रदेश रा बीचला अर उगनी जिला माए आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रह्यो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंड गया और कुछ हल्का माए छांटो छिड़को भियो। अलवर टोंक सवाई माधोपुर दौसा और सीकर जिला माए जोरदार बायरो बाजण सागे कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे उड़ा पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहर पाछे बिरखा हुई जिनू गर्मियों थोड़ी साता मिली। दुजगानी नागौर माए ओला पड़माऊं कपास री साख और सूरज री रोशनियों बिजली बनावन री मशीना ने नुकसान फियो।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में आई तेज आंधी अवन सागर कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला माए जोरदार बायरो बाजण सागे छांटो छिड़को भेवन रा समाचार है। राजरा घनखर हलका माए लाड़ला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिलाऊं दिन री भगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जदके रात री भगत ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर जयपुर भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मद माए लाड़ला महीना 1,94,000 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लाड़ला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रुपया ही। इन अवधि रे दौरान सामान री कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जदके सेवा हलका माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी ची। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतो CEPA आज लागू हो गयो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि इन करारों दोनों देशों बीच माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नई तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवन माथे जोर दीनो। 10 राज्यों माए राज्यसभा री 24 सीटा रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटा सारू चुनाव वेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश माए सराहुना भी और प्रदेश रा कई

0: ज़िला में आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
1: FM 107 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और

0: खेती और गृहस्थी सुनाले सगले हितालवाने भाई किसने कानिशु
1: और गोपाल भाई कानिशु मोकला मोकला राम राम
0: राम राम, राम, राम गोपाल भाई राम राम।
1: तो किसना भाई देखो के मौसम को जो मिजाज है वो आज का नया नया रंग जगा है वे अपन दिखा रहे हैं और ए रंग जगा दिखा रहे है आ एक प्रकार ही देखो के चेतावनी सी है कि भाई जठे जठे मान जगाई वे प्रकृति के साथ छेड़खानी करी है ने तो बी की है कि प्रकृति जकी है वा आपको रुद्र रूप जुको है वो दिखावे। अब प्रकृति जकी है वा आपनो पशुधन को जितना भी जीव जंतु ही बाको सगड़ा को देखो के पेट भरने को जो को काम है वो करे
0: करे।
1: तो अपन भी देखो के प्रकृति का जगह नियम है बाको पालन करनो चाहिए बी के हिसाब अपन ने चालनो चाहिए। एर बुढ़िया कहता ने के भया गिल चले गांव आवे
0: सही
1: जी आप उजड़ चलांगा प्रकृति का बनाएड़ा जगह नियम है गेला है बन छोड़ के चलांगा तो देखो के गांव को नहीं आवे कहने का मतलब ओ है कभी में नुकसान होने कोई खतरो है लाभ होने को कठई चांस है जो दिखे को नहीं।
0: भाई अपना जगह किसान है बस सगला ही बगत है उड़ीक रहा क्या करता कि भाई जोर की गर्मी पड़ेगी फिर मानसून वाली बिरखा होगी और गेलड़े दिना का मैंने देखो जोर की गर्मी पड़ी फिर गर्मी का बाद का मैंने बाहर जो को मौसम है वो देखो के एकदम से जोर को हो रही यहाँ महसूस ही को नहीं हो रही कि भाई जून को महीनो आ गयो।
1: हाँ
0: हालांकि देखो जून के महीने में तो देखो जून की तपन जब तक नहीं हुआ जब तक किसान के देखो के आनंद की बात को नहीं क्योंकि खेत की जगह तैयारी है।
1: हाँ हाँ
0: बस जोर की गर्मी है देखो के आपने अगले फसल खातिर आप खेत ने तैयार कर सका
1: सही बात है
0: क्योंकि भाई रबी की फसल लेने के बाद में बीच में उसको दो तीन महीना को अंतराल आवे
1: हाँ
0: एक महीने किसान भाई आपके खेत की तैयारी करे
1: जी।
0: और अब आ रही हो देखो जून को जो महीनो है बी के महीने आप खरीफ के महीने आप किक्की जगह करने वाला काम ही बाकी देखो तैयारी करा शुरुआत के महीने आप अपने खेत खेत ने देखो के बांध लगा के छोड़ा ताकि खेत की माटी के मायने जगह भी कोई कीटाणु ही जगह अपनी फसल ने नुकसान पहुंचाने वाला जगह कीट ही
1: हाँ
0: भाई देखो के ये गर्मी ने सहन कौन कर पाऊं भाई क्यों खत्म हो जा
1: सही बात।
0: और कई जगह किसान भाई ये देखो के देसी खाद है बा आपकी घर तैयार कर रखी है और ये बखत भाई खेत के मायने घेरे
1: हाँ।
0: और फिर बिने जगह जगह खिंडावे और खिंडा कर फिर बांध करे और बांध करने के बाद के मायने जहा मान लो जब बिरख्या आ जा
1: हाँ जी
0: तो आपको खेत की पहले से तैयारी रखे बीज है बी के मायने केक की आपने जगह मान लो के बाद बोझा डाली है केक के काम जगह करना ही पहली शु तैयार रखे
1: सही बात।
0: और अब बार देखो के जून की शुरुआत है आपने मानसून में तो देखो लगभग एक महीने को वक्त है और अब बार भी देखो कई ठोर बिरख्या हुई है कई जगह 15 आंगल 10 आंगल 8 आंगल बिरख्या हुई है लेकिन अधिकतर सुनने में आई आ रही है के किसान भाई अब बार बिजाई के मूड में कोनी वे अब बार जो को

0: क्योंकि बताने में आ रही है कि भाई यहाँ जेठ दो बता रहे
1: जेठ दो
0: तो जेठ दो बता रहे तो भाई के बीच का मायने जे मान लो के झांझली दे जा लंबे वक्त जे बिरख्या नहीं हुए तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा
1: भाई। अभी क्या है कि क्यों जल्दी है क्योंकि पुराणों जो आप इतिहास देखा ने खेती बाड़ी रो तो मार्च अप्रैल मई जून या अपा यहाँ मानस का अप्रैल मई जून है तीन महीना जगह ही जकान आप जायद फसला के रूप में जाने करा तो ए तीन महीना जगह ही तीन महीना का मायन के जीती भोपर पड़ेगी
0: हाँ।
1: जितो खाद कुड़ो गेड़ो है बांध कराने को काम है और छोटा मोटा जगह काम है सूड संबंधित काम है वे करके किसान आपके खेत ने एकदम के तैयार कर ले ताकि जब आपने बिरखा होवे जून को लास्ट सप्ताह है या जुलाई को जो प्रथम सप्ताह है तो भी दौरान की है के आपने जगी खरीफ की जगी फसल है बाकी बुआई को काम है जो चालू हो जावे क्योंकि आपने इलाके में ज्यादातर जो इलाको है वो देखो के बारानी है क्योंकि तलसीर को पानी जो है बीम फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है
0: ज्यादा है
1: इस खातर किसान है जगह देखो के बिरखा आधारित जगह खेती है वह करें और बीस यू पहले देखो के ए जगह तीन महीना ही अप्रैल मई जून का अंक माह वे खरीफ फसलों की बुआई पहली जगह करना रा काम है बंसों की तरिया पूरा कर ले ताकि बांग जल्दबाजी भी नहीं हुए और आज देखो के किसना भाई एक जून होगी एक जून 2026 और आज यू देखो के अपना जगह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान तो भाई देखो के एक नयो जुगो अभियान है खेत बचाओ अभियान तो एक ही देखो के शुरुआत करी है और ओ जुगो अभियान है वो एक लेकर 30 जून 2026 तक पूरा एक महीना देखो के चालसी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा ओ जुगो खेत बचाओ अभियान है तो एक माह की है के जिया कृषि विश्वविद्यालय ही केंद्र और राज्य सरकार का जगह वरिष्ठ कृषि अधिकारी बांके सागे देखो के अनेक विषय पर बतलाव ने जगी होसी और अंक माज का मुख्य रूप देखो के जगके बिंदुआ पर बातचीत होसी बिम देखो के एक आपा कैस का उर्वरक उपयोग है
0: उर्वरक खेती
1: हाँ मृदा परीक्षण माटी की जांच करावा कईया करावा बिगो नमूनो कईया लिया कठे परीक्षण वास्ते देवा कितना दिना बाद में वो कार्ड बन किया हुए बिगमा के सिफारिश आवे के भी उन संबंधित माटी संबंधित जितनी भी जानकारी वह अपन मृदा परीक्षण मिल जावे तो वो देखो के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने
0: अच्छा।
1: और कृषि विशेषज्ञ भी कमे के प्रत्येक तीन साल के अंतराल से और प्रत्येक किसान ने देखो माटी पानी की जांच है वह जरूर करवानी चाहिए ताकि खेत की माटी में जगह संतुलित उर्वरक हो बाकी मात्रा को किसान ने पतो चाल जावे और भी के हिसाब जगी आगामी जगी फसल बाण आ रही है जिया आगा आना रो सीजन खरीफ को है तो भी कौन कौन सी फसल के लिए किसान के खेत की माटी जगी वह अनुकूल है और जे भी कोई पोषक तत्व की कमी है तो भी की पूर्ति जगी है वह कहीं करा आ सब बातों को देखो के जानकारी है वह अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने से हो जावे
0: जी।
1: इसके अलावा जिया कम वर्षा की स्थिति हुए कटाई जिया में कम हुए तो भी के लिए जिकी वैकल्पिक कृषि पद्धति है वहां के ऊपर भी देखो के विचार विमर्श है जो करियो जो सी। इसके अलावा जिया नकली खाद है तो नकली खाद की पहचान किसान कहीं करे बीज और कीटनाशक जो आवे तो बीमे भी देखो आज बाजार के मां तरह तरह का बेईमानी का काम हो रही तो किसान जो है वो असली बीज और असली कीटनाशक जो है बिकी पहचान है जो कहिया करे तो ये अनेक प्रकार का देखो के विषय ही तो आगे ऊपर देखो के जगह जागरूकता कार्यक्रम है वे पूरा मन देखो एक जून और 30 जून तक है चाल सी और सागे ही देखो के खेत स्तर पर जगह प्रदर्शन और कृषि मॉडल जगह हुए बांके माध्यम से भी जगह वैज्ञानिक है वे देखो के खेती का मां बढ़ाओ कहीं दिए जा सके

0: नई कृषि सोच है, कृषि नई कृषि तकनीक है, नया कृषि उपकरण है, कौन कौन सा आपा खेती का मां शामिल करके और ज्यादा ज्यादा जो उत्पादन है वो आपा ले सका।
1: भाई ज्या थे शुरुआत में बात बताई के खेत बचाओ।
0: हाँ,
1: अब कई बार किए गए भाई किसान भाई ये देखो मन से खेती बाड़ी करे।
0: हाँ हाँ,
1: और चोखा बीज भी लेके आवे, खाद भी गिरे।
0: हाँ,
1: और जिया थे बताइएगा भाई ए जकी चीजा आपा बाजारों लेके आवा।
0: हाँ,
1: और आपने जे नकली हाथ आ गई और आपा अपने खेत के मायने बिजाई कर दी, अपना 5 रुपए भी लाग गया।
0: हाँ,
1: और फिर साल का अंत में जब आपा मान लो के लावणी करार भी बखत जे नाज को हिसाब किताब बठावा।
0: हाँ,
1: तो आपनी जकी लागत है बात हो जाए ज्यादा और जकी आय है बा हो जाए कम। तो लागत ज्यादा होगी, आय कम होगी, तो किसान को मोह भंग हो गयो।
0: सही बात।
1: वो धीरे धीरे फिर खेती की ओर भी को रुझान कम होने लग जाके भाई खेती बाड़ी तो अपन धोखो देने लग रही है, तो फिर अपन खेती में कोई अपन फायदो को नहीं।
0: ठीक बात।
1: तो यो जो को रुझान बढ़ाने खातिर के किसान ने कोई प्रकार को नुकसान नहीं हुए।
0: हाँ हाँ,
1: तो बिग लिए जागरूक किया जा रहे हैं कि भाई शुरुआत में ही थे सचेत हो, जब थे बीज खरीदने जाओ भी वक्त भी थान सावचेती बरतनी है।
0: हाँ,
1: थे भाई को बिल भी लेके आओ, काल ने मान लो हल्की भारी जे कोई मान लो हो भी जा खेती बाड़ी के मायने।
0: हाँ हाँ,
1: तो कम से कम आपा जाके अगले ने कह तो उसका कि भाई बीज तेरे को ले गया, ओ तेरो बिल है और मारे खेती के मायने नुकसान हो। तो कम से कम किसान अगली बार खेती बाड़ी करे तो कम से कम जागरूक रहे, बिन फायदो हुए तो और भी को मन बढ़े।
0: किसना भाई आज को जो टेम है वो आर्थिक युग है और आर्थिक युग के मायने आपा देखा कई बार जिया मंडी रमाय सब्जी लेवण वास्ते जावा।
1: हाँ,
0: अब सब्जी बेचना रज काई बे ऊंची ऊंची देखोगा आपकी बे गद्दी सी सीट सी बनाईडी रखे। अब बांकन जे आपा देखा तो पुराना कांटा आडा टेढ़ा हेड़ा कहेंगे बाट को नहीं बाठांगा बाट बना रखे कह वो आधी किले को है, किले को है, दो किले को है। अब बताओ वो दगड़ जो को है भी को के ठा लगे। अब वो तो वो कह दियो कि भाई वो 1 किलो को दगड़ है, मैं तो बाट बना रखे है, वो फलानो ले गयो जी खातर अड़ी में काम काटा है। और जी हाँ, आम की रुत है, आपा कह दियो भाई बढ़िया देखो 2 किलो आम है जगह देते
1: दे दे।
0: अब वे माइले पासा जिन्हें खड़िया होने बिने वे केक रहे के जिकी खराब होड़ी चीज है फल जगाई या सब्जी है वे गिरडी रखे। चाहे आम हुए, चाहे चिक्कू हुए, चाहे आलू हुए, चाहे टमाटर हुए, चाहे क्यों हुए। तो आदमी जिये के भी की नजर चुके ने इन्हें भी न हुए या वो देखे कि भाई गोजी में पिसा काटा पिसा देना पड़ सी। तो इतनी देर हम वे केक रहे के भी मैं 1-2 पीस इन पे टेक दी। अब आपा तो यहाँ राज्य हो रहा है आपा अपना हाथ छांट के दिए वो आग लो तकड़ी हम गाल गए तोलन लाग रहे। अरे आपा गोजी का नजर हुई नजर चुकी।
1: हाँ, वो छोटा बड़ा का चक्कर कर दे।
0: अब घरा ले जाके दा आप घरा से ले जाके आपा त्यार घर के मां महिलाएं जी की थैली खोल लें कभी अमृत बनावा। अब देखे तो आम जगह तो घलेड़ा टाकी वेड़ा। अब कहें कि थे ए के आम ले आयो
1: बेबन और रोला करे।
0: हां के आम के मैं छांट के ले आयो बहुत जोर का ही खुशबू आवे।
1: हां
0: बोले खुशबू को नहीं आवे आम तो बांस आवे।
1: हां
0: बोले दिखा। अब दिखावे तो भी कमा 2 आम जगाई बे गलेड़ा आ गया।
1: हां
0: ये क्या हुई
1: तो
0: कहने को मतलब वो है कि आज के टीम के मायने जको आदमी जागरूक सचेत रसी ने वो देखो धोखो कौन खा। और जे आप आइए आंख मिस लिया अगले पर आंख मिस के विश्वास कराने तो भी मैं कट्ठे ही आज के टेम में कोई चुके को नहीं। अब खेती किसानी का जगह काम है, किसान का जगह काम है, वह कितना मेहनत का काम है,
1: मेहनत का काम
0: है। अब बांक कह जिया बीज खराब आ गयो और खेत में बा दियो बताओ कितनी परेशानी होगी। बीज उगो को नहीं, पाड़ कराई कितनी बीघा भाजा दौड़ी हुई। अब बताओ वो क्या करेगो किन कहेगो
1: भाई एक सीजन मान लो वो पूरा खेती बाड़ी भी टिकड़ो है वो।
0: हाँ,
1: दूसरो काम दाम करेगो नहीं।
0: हाँ,
1: फिर वो 6 महीना तक भी के पीछे पड़े रहे, लास्ट के महीने जब नतीजो उल्टो आवे।
0: हाँ,
1: तो वो किसान तो टूट जाए फिर।
0: हाँ,
1: तो सावचेती पहली की बात ही भाई विश्वास वाली बात देखो रही को नहीं। पहली आप जिका किसान आबे सगला आप श्री कमाई ईमानदार है दुकानदार है बेबी किसाना के प्रति थोड़ी यहाँ दया भावना रखा करता।
0: हाँ,
1: साल भर पचे ना पर ढंग की चीज दिया।
0: सही बात।
1: लेकिन

0: माने कसा के देखो सो क्यों बदल रहे आज आपने आंख मूंद के विश्वास करनो था मान लो के अपने आप पगा पर कुआड़ी मारने के समान है। कोई भी आपा चाहे सामान लेने जावा चाहे आपा और कोई खरीदारी खेती बाड़ी से संबंधित कोई चीज लावा तो आपा चौकी त्रियासू ठोक पीट की बढ़िया तेरे से भावताव करके और अगले ने पूछ लिया कि भाई तेरी गारंटी भी चीज का मायने है को नहीं है तुझकी बात करूं भी सच्चाई की थी गए
1: सही बात
0: सगली बात करके चौकी त्रियासू फिर आपा देखो कोई चीज खरीद के लानी चाहिए।
1: और जद आपा सावचेती हूं कोई काम करांगा ने तो ब्यू के आपने नुकसान को नहीं हुआ तो ई खातर ही देखो के ए इतरे का अभियान जगी अपनी सरकार है बा चला रही है बार बार चला रही है किसानन जागरूक करने वास्ते क्योंकि किसान जको है वो अन्नदाता है। अनाज को उत्पादन है सब्जियां को उत्पादन है फलां को उत्पादन है दूध को उत्पादन है पशुपालन को काम है डेयरी को काम है बागवानी को काम है तो ए जका महत्वपूर्ण काम है जका को उत्पादन तो करे किसान और आवश्यकता देखो कि सगले मानसन है। अब कदे इया उसके के ना गांव में रहे भाई बन नहीं फलका की बाजरे की रोटी की दूध दही राबड़ी छा राबड़ी जरूरत है शहर में रे मान जरूरत को नहीं
0: बात तो सही है
1: बात तो
0: सबने
1: क्योंकि ये चीजें इसी के प्रत्येक मानस के लिए स्वास्थ्य ने सही रखने के लिए जरूरी है। तो किसान आ चीजा ने जितो तन मनु देखो के उगावे को बांग उत्पादन करेगो और एक दिन जैविक तरीकों को उत्पादन करेगो तो बीसियों देखो आपनो पर्यावरण भी सही रहेगो किसान को स्वास्थ्य सही रहेगो किसान को परिवार जो है वो खुशहाल रहेगो और जकी चीज जको उत्पाद जकी जिन सापा बाजार में बेच के आवांगार जका बाजार में शहर में रहना रमान से वे ले जाएंगा तो बांक स्वास्थ्य जो है वो भी सही रहेगो क्योंकि आज इतो बड़ो आपनो भारत देश है और इतनी जनसंख्या है तो दो टेम की रोटी तो किसना भाई लगावन का सागे देखो कैसे नहीं चाहिए आ जरूर है कि किसान दिन भर खेती रो काम करे खेत माते काम करे तो बिन भूख ज्यादा लगे तो वो बाजरी का रोट दिन में चार बारी पाड़े एर जगह बैठे हो काम करे तो भाई आपका दो दो फलकिया खा ले भाई टेम सारू तीन चार फलकिया खा ले पर यहाँ को नहीं उसके पीछे फलाने के तो पेट में गांठ है भूख लग गई को नहीं रोटी तो देखो दो टेम खानी पड़ सी
0: भाई देखो जथिया बात शुरू की तो आप किसान बहन देखो सलाह देनी चाहूंगा कि भाई आप जकी भी चीज आपने खेत के मायने उत्पादित करा देखो चोखी होनी चाहिए आपने मन से कोई काम करा तो आ नहीं होनी चाहिए कि भाई दूसरे ने आप अड़की चीज दे दिया और आप आसा रखांगे माने बढ़िया चीज मिले तो आ कदे ही को नहीं होगी अगर आप दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना रख चाह तो वो घाटो एक ने एक दिन देखो आपा नहीं होना
1: सही बात
0: ईमानदारी से काम करा चोखी चीज आप अपने खेत के मायने बावा और बढ़िया चीज दूसरा ने भी खवावा और बढ़िया चीज आप भी खावा
1: तो सगड़ा जगह अपना श्रोता ही इताड़ू श्रोता ही किसान भाई जगह बार ही टेम रहे माइन आपने जो आकाशवाणी केंद्र चूरू से कार्यक्रम सुन रहे हैं खेती और गृहस्थी तो बन सब नहीं आप देखो कई कहना चाहवागा कि भाई एक तो थे नियमित रूप अपना जगह कार्यक्रम है चाहे किसानवाणी हुए चाहे खेती और गृहस्थी हुए खेती संबंधी जगह भी कार्यक्रम है बन थे नियमित रूप सुनियो क्योंकि आज उन लगा के 30 जून 2026 तक पूरे एक महीने वो देखो के खेत बचाओ अभियान जो है वो चलेगो और एक माह रोज की देखो के नई नई जकी बाता ही बतलावन जकी वे आपने सुनने वास्ते मिलेंगी और वे सारी की सारी जकी बाता ही वे थारे काम की ही थारे फायदे की ही किसान के देखो हरेक तरीकों फायदो किया हुए किसान को जीवन जो है वो खुशहाल किया रहे तो आपा भी देखो के आई अरदास करार आपनी जी की सरकारा ही बांको भी वो देखो के प्रयास है के चाहे वा फसल बीमा योजना हुए चाहे पशुधन बीमा योजना हुए चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुए और तरह तरह की किसाना की इतिहासी योजना चल रही तो बाऊ सारो जुड़ो सारो फायदो लियो पर वो एक मन को जो कार्यक्रम है खेत बचाओ अभियान इन्हें देखो के एकदम अपने मन लगा के जिसका कार्यक्रम है खेती बाड़ी संबंधित वे अपन सुनना ही और अम्ज की बतलावन बात की आपने बताई जावे बा देखो के अमल में लानी तो बातचीत तो आप और भी करांगा पने किसान भाइयों को मनोरंजन भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो बान सुनावा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: हाँ, तो अभी आप अंतराल से पलिया मुरली राजस्थानी और साथियों की आवाज रमाए आपने किसान बयान लोक रचना सुनाई। हाली तेरा खेत पड़ा है दूर खेत में दिन छिप जा सी। और किसान को तो देखो के दिन है जो खेत में ही छिपे,
2: खेत में उगर खेत में छिपे।
1: इतारा सीढ़िया में बुई के माँ देखो के एक मक्खी नौ थोड़ सो बड्डो जानवर हो है
2: बीमरी।
1: तो बात ये अंधेरो होने लागे ने
2: जिस बोले
1: तो बी टेम के बा बुई के ऊपर बैठ के बा आप और भजन है जो चालू कर दे
2: शुरू कर दे।
1: हाँ जी, आपने प्रोग्राम की एसटी बजे ने ये बा एसटी बजा दे के भाई किसान है अब थारो घर जाना वो टेम है जो गयो तो थे धीरे धीरे काम है जो पूरा करके घर का नहीं
2: टूटको।
1: तो किसान के तो देखो के दिन के दिन उगे जदू लेके देखो के तरह तरह का काम है जो वह करता रहे। आगे जिया खरीफ को जो सीजन है वो किसना भाई धीरे धीरे देखो के नेड़ा आ रही है
2: लाग रही है बस एकदम दे तैयार हो रही है।
1: जी आपा मकान आसरा बनाने की सोचा ने तो गांव में कह रहे हैं कि एक साल ईंट की इंतजाम करें, कदे भाठो गिरावे, कदे बजरी गिरावे, कदे पट्टी गिरावे, कदे जंगला बनावे, कदे क्यों कदे क्यों, फिर सारो सामान भेड़ो जा पी के बाद में जोग बैठे भी साहब आपका बे आसरा जगह बनाना चालू कर तो ब्यू की है के एक सागे आदमी टूटे भी को नहीं, पिसा को जुगो जुगाड़ है वो भी बैठ जा और मिनट में ही देखो के अब आप कह कराने के आग लागने के बाद में कुओ खोदनो
2: फायदो
1: है। तो खेती किसानी में भी आई है के खेत जुड़ा जगह काम है के फसल ने बाने से पहली का जीता भी काम है वे आप धीरे धीरे करके और पूरा कर लेवा ताकि जद भी जोर की बिरखा अपने इलाके रमाए हुए तो भी टाइम देखो के हड़ियों जो है वो कुएं पर मेल के और भजन गाता जाओगा हड़ी तेरा खेत पड़ा है दूर खेत में दिन छिप जासी
2: है। भाई खेती बाड़ी को जो काम है बीम देखो तरीके से अगर कराने आप
1: हाँ
2: तो बी कमाए ना मान लो के 20% से लेकर के 25% तक के बी बढ़ने की गुंजाइश हुआ है।
1: सही बात
2: भाई, जब आपा ने खेती बाड़ी को काम ही करना है
1: हाँ हाँ
2: तो फिर आपा ने क्यों ना तरीके से करना चाहिए और बी को जो इंतजाम है वो पहले तैयार करके आप आ रखा।
1: सही
2: भाई, आपने जो को उत्पादन है वो एक तो मान लो गए हमेशा से होते आ रहे, अब पहली उत्पादन हो तो और जो आज भी बीतो ही होने लग रहे तो आज के खर्चा को और पहली के खर्चा को जो आप अंतर संभाला तो आ मान लो के आपनो खर्चो तो ज्यादा लाग रहे, उत्पादन कम हो रहे
1: भाई, जमीन आसमान को अंतर
2: आ रहे। तो पहली सी बात तो है खेत के मायने दाना छिड़के यार फिर निनाण करने चला गया फिर सीधा इलावनी करने चला गया
1: नाको लागे को
2: लागे को नहीं। तो अपन जो मान लो आपने खेत के मायने उत्पादन बढ़ाना है
1: हाँ जी
2: तो बी का जक्का भी तरीका ही बस सगले तरीका ना आपन देखो काम में लेना पड़ेगा।
1: ठीक बात,
2: और सागे सागे जका कृषि विशेषज्ञ आपन जका सुझाव दी
1: हाँ हाँ
2: बा तरीका ने आपन व्यवहारिक रूप से आपने खेती बाड़ी के मायने लेना पड़ेगा और जमीन की जकी उत्पादकता है भी बढ़ाने वाला जका भी उपाय है
1: हाँ हाँ
2: आपन देखो सगला करना पड़ेगा।
1: सही बात,
2: अब शुरुआत से जे आप मान लो बात करा तो बिरखा होने के बाद के मायने देखो बुआई हुए।
1: सही है,
2: तो कई बार के वह जो मान लो बिरखा होगी और बिरखा होने के बाद में आजकल देखो के ऊंटे आला जगह हली तो लगभग मान लो के बहुत ही कम हो

0: कम रहे
1: तो बांक के ऊपर तो जे आप आश्रित हो जा तो आपनो तो एक महीने लेट हो जा। आज के लिए तो खेत देखो के मशीना से हो रही है खेती। तो जी बिरख्या होगी तो जका बे मान लो खेती बाड़ी करने वाला जका बे ट्रैक्टर चाल ले बाने फटाफट कर गिर एक दो दिन का मायने
0: बुआई को काम है वो फटाफट ही हो जाए।
1: अब पहली तो देखो के आठ आठ दस दिन तक के बुआई होती है बाड़ांगी जी की बुआई है बा देखो थोड़ी गहरी होती
0: है। सही बात है।
1: और बा बुआई ग्रेडी जल्दी सी कहे भाई जे पांच दस दिन की जे मान लो आंधी आ भी जाती तो बा कहे नुकसान में कौन होती
0: भाई भी लांची कौन लागे
1: लांची कौन। और अब तो देखो के जहाँ ट्रैक्टर से खेती बाड़ी हो लगी तो बुआई को जो वक्त है वो मान लो के तीन चार दिन को है। अपन थोड़ी सो भाई सावचेत रहे कि आप पहली तैयारी रखा गया जहाँ दस बारह पंद्रह आंगल बीस आंगल में हो गयो और आपने खेती बाड़ी की जे मान लो बुआनी है तो आप पहली तैयारी करके रखा और दो तीन दिन का मायने आपने खेत की बुझाई करवा दिया।
0: सही बात।
1: तो वक्त के ऊपर बुआई करानी बहुत जरूरी। फिर भी के बाद में जहाँ मान लो बीज बोड़े की जे बात करा बार भी थे बताने लग रहा कि भाई पहली तो तय कर लो कि आपने ई खेत का मायने ई आवड़ी का मायने कौन सो बीज बाड़ना है।
0: सही बात है।
1: तो वो तय भी देखो करने खातर है भाई माटी पानी की जांच है बा आप पहली शुक्रवार की
0: जरूरी है भाभी
1: क्योंकि जे बाद में आप करवा तो बहुत लेट हो जाएगी
0: ना ना बाद में कोनी होए।
1: तो अब वो जो खाली वक्त है ई का मायने आप अपने माटी पानी की जांच करवा सका।
0: सही बात।
1: और करवा की जकी भी मान लो सिफारिश है की आपने ई आवड़ी का मायने ई खेत का मायने वो जो बीज है वो अगर बोआ तो अपन फायदो है। तो भाभी देखो के अपन पहली से तैयारी रखनी जो बीज है वो प्रमाणिक बीज।
0: सही बात
1: भाई। आप नहीं किसी दुकान पर गया आप खरीद के लिया यार फिर जद लावनी को टाइम हो अभी भगत बेरो पड़े हो भाई आपा तो बीज खराब लिया है।
0: भाई आंख मीच के देखो कोई भी काम है जो आप को नहीं करना और जी आप करांगा तो भी देखो के फायदे की जगह नुकसान होने को डर रहेगो। इस खातर आंख मीच के काम को करना है सोच समझ के इन्हें बिने राय लेके और बी के बाद में आपन खेती का काम है करना चाहिए।
1: और बीज लिया है तो फिर देखो बीज लाने के बाद बीज उपचार भी जरूरी है।
0: जरूरी है सर।
1: पैरडी सी तो बात है को नहीं का भाई आप बीज लिया खेत का मायने गेर दियो क्योंकि आपने खेतों का मायने दुनिया भर का देखो कीट हो रहे
0: हाँ।
1: और जे आप मान लो के बीज उपचारित करके नहीं बोयो तो वो उगने से पहले ही नष्ट कर देगा
0: भाई। टापरिया का जी टिक्का लगाओ ने रोगों बचाव खातर तो बी के बीज को उपचार कर दिया तो भी फसल में आगे आना टेम में जी होना रही बीमारी रोग है कीड़ा कांटा लग गए तो भी वो अपनी फसल है जी बचेड़ी रहे। अब इम के एक तो उपचारित कर रही बीज आवे। अब कई किसान इसे आपका घर को बीज है वो खेतर में काम में ले भाई तो घर को बीज है तो बिन जे उपचारित करें तो भाई एक बात को ध्यान जरूर रखे रसायन लिया वो देखो छया कोई तिरपालियो बिछा के और भी को ऊपर बीज जो है वो गेर के और भी सिंपलिया देखो के नाक का के कोई सुतु तोलियो को मास्क जो है वो लगा के रखना चाहिए। हाथ के मा दस्ताना जो कहीं पैर के भी के बाद में रसायन मिला के भी बीज के और धीरे धीरे करके और लगाना चाहिए और फिर भी ने छाया का मा ही सुखाणु है या नहीं का आप पंखा चला दें भोबर पड़े बारह मेल दें तो वो बीज तो पांच मिनट में सूख जाएगा
1: वो कोई काम कोई कौन
0: तो वो खराब हो जाएगा। तो किसान भाई जे बीज ने उपचारित गराई जे करें तो ये बात को भी ध्यान रखें के मुंडो ढकेड़ो होना चाहिए छया का मा तिरपाल बिछा के हाथ में दस्ताना पैर के और फिर आपन सो की तरह वो रसायन लगा के छया का माई सुखाणु है और फिर आपन के बाद में काम में भी लेना चाहिए।
1: और फिर जे मान लो के आप घनी उत्पादकता की जे बात करा तो गर्मिया की जिकी जुताई है बा देखो बहुत
0: भाई भी को तो देखो कोई ओड को नहीं
1: क्योंकि हर भाभी गहरो जुको
0: हल है
1: भी सवनी चाहिए
0: सही
1: ताकि भाई पिछली बार का जे मान लो के घास फूस का अवशेष ही भाई भी बाकी जड़ भी नष्ट हो जा बिगे सागे सागे जका कीड़ा ही बे जमीन बारह हजार आज की भोबर बड़े बिग मैं नष्ट
0: खत्म हो जा
1: और ई के सागे सागे जी आप जो भी बीज आप तय कर लियो भी आपने खेत का मायने वो बीज बोनो है तो भी बीज की देखो दर है भाभी निश्चित होनी चाहिए कि भाई एक बीघा का मायने इतो कई बार के भाई किसान भाई जी लालच कर दिया कि भाई आप थोड़ा जाडो बीज दिया और थोड़ा बहुत निकल भी जागो तो बहुत बच जाओ। अब पीक मायने की हो भाई जाडो बीजेड़ो और कई बार संयोग से बिरख्या पर बिरख्या होने लग जाए फिर जे लांची दे जाए तो बूढ़ो जाडो जुगो ना जब वो देखो की नाल
0: गरफाण माच जा गरफाण माच जा रहा आदमी है जुगो निकले कौन जा इन्हे बिने बे के चाल चाल ये वांगे अरे नाल जगा इन्हे अरे ऐसे देखो सड़पो माचे कने तो ढंगो नी नान हुए एर ने कोई सब्जी सब्जी आपा देखने या खेत ने संभालने की जे प्रयास करा तो बीच मा की निकल कौन सके
1: कौन सके
0: तो नाज तो दिसो की है के छिद्दो होवे को ने भी तो ही बढ़िया होवे को और भी को उत्पादन जो है ने वो ज्यादा होवे को।
1: और कई बार देखो गोपाल भाई के कई की खेता का मैंने देखो के जमीन की सुई को नहीं हो बीच बीच में टिब्बा भी
0: होवे
1: तो टिब्बा का मैंने फिर बीजाई के हिसाब से करे भी बताओ
0: भाई उबड़ खाबड़ जी की जगह है ने। अब पहली तो अड़ाऊ जगह बीजता तो बहत है भी नहीं साबू बह देखता कि टिबड़ी की आप बुआई कहीं करा पर आजकल ज्यादातर खेता का मां देखो कह ऐसी की बुआई को काम है वो ट्रैक्टर से हुआ है। अब ट्रैक्टर को जो को ड्राइवर है ने भी पर बात ऐसी की निर्भर करे के एक तो जी यहाँ नयो सिख तोड़ो है ड्राइवर अरे एक पुराणो है तो पुराणो जी ड्राइवर है तो भी ने भी चीज को भी काम को अनुभव हो भाई आ टेकड़ी है वो टिब्बो है वो के हिसाब हुए ट्रैक्टर किन्ने की चढ़े और किन्ने की उतरे को क्योंकि आप आई साल देखा आके बिजाई को काम चाले ने तो भी टेम कई बार हादसा हो जाए हादसा क्यों हुए के जिया तिरछा टिब्बा हुए और नयो खिलाड़ी चढ़ेड़ो है अब वो चाह पी के चिटर दबे अब दब है अब थे जानो को मशीन है तो आप यहाँ कमांड देशिया भी काम करसी
1: भाई करसी बात
0: हाँ तो बे की है के फिर कई गुलेटी खा अब गुलेटी खा थे जानो के ड्राइवर तैया पर पड़ गयो या तई भी के ऊपर पड़ गई या ट्रैक्टर के तले दब गयो
1: वो नुकसान तो ड्राइवर नहीं
0: हाँ तो ई खातिर के ई तरह का हादसा हुए तो अपन लापरवाही कौन करनी अगर बाने के लायक न हुए तो भी टिबन छोड़ देनो चाहिए भी के बाद में हलूं या फिर कसियो लेके जो आपा निनान करा बीऊ और बीज जो छिड़क के और कसियो बीज जगह में मिला देनो चाहिए ताकि आपने जगह जगी अबा भी खाली कौन रहे और आपनो खेत है वो भी पूरो बाई जा।
1: और ज्या मान लो माटी पानी की जांच होगी बी के बाद के मैंने देखो जो उर्वरक है कि भी खाद जी आजकल तो देखो आपा देसी खाद की बात करा अपने खेत ने आप चार भागा में पांच में दस भागा में आप बांट
0: लिया
1: भाई अब की बार आ खाद है ये आवड़ी में गिरनी है
0: सही है
1: फिर अगली बार भी दूसरी आवड़ी में गिरनी है तो ऐज की खाद है बाबी देखो कि एक निश्चित मात्रा में आपा देनी है आ नहीं कि भाई बड़ी सारी आपा खाद दे देंगे तो बड़ो उत्पादन हो जाएगा
0: भाई ई खातिर तो आज जगह कृषि विशेषज्ञ ही बस सलाह देवला का किसानन के भाई जैविक तरीकों खेती करो जैविक खेती में क्यों है कि एक तो जी घर में जी कंपोस्ट खाद तैयार करा बा एक जी की केंचो द्वारा खाद तैयार हो बा और एक हरी खाद कई बार आप देखा अगर ज्यादा पानी पड़ने से और फसल है जी केगा ना आप सुना बच गया फल फूल भी लागे को नहीं अगली जी की फसल है भी को टेम नेड़ा जा
1: सही है।
0: तो किसान के एक रहे के बाद सारी की सारी फसल जी की है बार ट्रैक्टर करा के बांध और खेत में मिला दे अब बाज की हरी खाद है बा खेत की मृदा का मिल गई बी के बाद में जी की आप फसल बावांगा बी को असर भी फसल में दिखेगा तो कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के सहयोग की आप खेती करा बा देखो जैविक खेती है जगह के मां जहर को देखो के कट्ठे ही नामो निशान को नहीं हुए क्योंकि जहर जे आप बीजांगे लगावांगा बाद में छिड़कांगा किया भी दो पानी मिला के ढोल क्यों बिया छिड़कांगा पड़े जहर जो है ने भी को असर अपने पेट तक पुगे बिना रह और वो देखो नुकसान करे तो ये खातर आपने रसायन को कम से कम इस्तेमाल करके जैविक तरीका को जो उत्पादन है भी अपन देखो खेती बाड़ी का काम ज्यादा में ज्यादा करना चाहिए ताकि आपनो स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे साफ रहे भी में देखो सबकी भलाई है।
1: और गोपाल भाई देखो के खेती बाड़ी के मायने फसल चक्र है भी ने भी देखो उपयोग में लेनो।

0: जगह किसान भाई अब भाव ताव देख के फिर फसल ले होंगे भाई इको भाव चौक है आप तो आपने खेत के मायने आई बात
1: टेक दे हो गए
0: टेक दो अब अपनी खेत की जगह जमीन है बा मान लो बी नाज ने नहीं माने तो आप चाहे कितो बढ़िया बीज लिया और आपने खेत के मायने बीज दो बी को उत्पादन जितनी आप सोच रहा की बीतो देखो है
1: एक खातरी तो आप मिट्टी पानी की जांच कराओ
0: जांच कराओ और फिर जांच के सागे सागे जहाँ मान लो गए आपने बाजरो बैठो है तो बिन अगले साल बाजरो नहीं बा के मान लो कोई दलहनी है गुआर है ए चीज आप
1: भाई प्रत्येक जी की फसल हो तो भी की जड़ जी की है वह हमेशा देखो का जमीन में रहे है और अलग अलग तरीके की जी की फसल है बाकी जड़ के माँ देखो का अलग अलग प्रकार की जी की खाद है वह बनाने की कैपेसिटी हो है। अब प्रकृति को जो सिस्टम है वो बहुत जोर को है अब पहली जद अड़ंगा जद अब बाजार मावे बह कोनी आज 20-30 साल पहली तो बी टेम अपना जगह बटका माइत जगह खेती करता तो पांगा तरीका है ही तो है क्या बदल बदल के करता और बा फसलां की जगह जड़ जगह है बा जमीन में रहती और बा जद बह बांध कराता या खेता ने बातार में होतो जोर को तो बी सी बह जड़ जगह जमीन में गलती और गलने सी की एक बा खाद बनती और बाज की खाद है बा देखो का अगली फसल के काम करती
0: सही
1: तो बा नाको देखो कह वो खाद खुरडो है जो गिरने की बात जुड़ती कौन पड़ती
0: है
1: तो ये खातर अपन के ज्यादा से ज्यादा ए जगह तरीका ही ए अपनाना चाहिए
0: और एक सागे सागे देखो गोपाल भाई जहाँ मिश्रित खेती पर भी अबार देखो अपना कृषि विशेषज्ञ बहुत ज्यादा
1: हाँ हाँ
0: क्योंकि कई बार के वगैरह जहाँ आप मान लो माटी पानी की जांच भी करवाई सो को काम करवाया लेकिन कोई प्राकृतिक ये की आपदा आ जा बीज वो बीज आपने खेत के मायने नहीं हुए तो आपने किसान बहन देखो की मिश्रित खेती है पी को भी देखो उपयोग करना चाहिए सगड़ा आपा मिला की बीज बोवा तो बांग मैन जे सहयोग से मान लो प्रकृति जे एक दो बीज के खिलाफ चली जाए तो क्यों तो आपने खेत के मायने
1: भाई एकदम क्या है सुको कौन जा
0: सुको कौन जा
1: सुको कौन
0: भाई रिपिया अपना बिता ही लाग जा तो कम से कम क्यों तो देखो
1: भरपाई हो जाए भरपाई हो जाए
0: और किसान भाई जका मान लो जे सिंचाई की सुविधा है तो बना आप आई कहनी चाहो भाई आजकल देखो ड्रिप सिंचाई जगह पिक ऊपर देखो सरकार बहुत ज्यादा जोर दे
1: बूंद बूंद
0: बूंद बूंद और बी से पानी को देखो दुरुपयोग कम हुए
1: ठीक बात है
0: और सीधो आपने पौधे की जड़ के मायने पानी जा तो कई बार जे मान लो के बीच के मायने बिरख्या लंबो वक्त दे जा तो जगह के साधन हो तो देखो एक दो पानी दे के आपको काम काट से
1: भाई बूंद बूंद सिंचाई में किया एक तो खरपतवार कम हुए एक देखो के पानी की बचत हुए है और एक सिद्धि की एक जड़के मा नमी बनी रहे तो बीसू की एक फसल या पौधो जो भी है पिन के एक वो पानी मिलवो करे तो बीसू की एक भी की बढ़वार पैदावार जी के बाद ज्यादा हुए
0: बिल्कुल बिल्कुल और भाई देखो के आपा कोई भी खाद है बीज है कीटनाशक है कोई भी जे चीज खरीद के लावा तो किसान बहन आपा सलाह देगा कि भाई बी को देखो पक्को बिल जरूर लेके आओ और जकी भी आपा आपने खेत का मैंने फसल बोवा भी देखो बीमा जरूर करा लेनी चाहिए
1: सही बात
0: क्योंकि आजकल देखो प्रकृति को कोई भरोसा को नहीं अपना रिपिया भी मोकला लाग जा और फिर जैया की कोई आपदा आ जा तो आपा देखो खाली हाथ रह जा तो सरकार देखो बार बार आपा साफ चेत करे कि भाई आपके खेत का मैंने जकी भी थे फसल बोई है भी की बीमा करा लो और बीमा देखो बड़ा रुपया लागे को नहीं थोड़ा सा रुपया लागे और बस आपने देखो कई हजार रुपया की बचत हो
1: भाई प्रकृति को तो किसना भाई अब के ठा लागे परसु पले दिन आथन के माहौल बनियो जोर को अब पहली तो सब आई काली पीड़ी आंधी जो सगड़ा देख लियो एकदम राख में नहेड़ा सा हो गया अब कह दिन तो किन
0: सही है,
1: है? क्योंकि क्या करे ने के समर्थ को नहीं दोष गुसाई
0: गुसाई
1: जट्ठे जोर नहीं चाले बट्ठे से कान झड़का वो करे कोई रुमालियों झड़कावे कोई गमछियों झड़का भी करेंगे
0: करेंगे जोर तो चले ही कोई नहीं
1: अब खेता में जो वो कोटलो कटाएड़ो रफो वो कट्टे को कट्ठा देख लियो तो के हवा को चक्कर बने हो और जटे जटे की बांधी निकली बड़े वो कुटल है जो अभी तक ग्राम सुरनी मायो को
0: और बोधो गोपाल भाई आपने कई मिनखा तो बिछो देखी कोई
1: एर घरा का मां लुगाई जगी बांगा दुआ नहीं चाहिए करता करता का भूखिया इने चाई चाई कर लागा देख लेते किता के दोवे का बालता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है
0: सही
1: अच्छा फिर की अगर छांट चालू ये फिर छांट बंद हो गए और किसना भाई कई जगह निम्मू मान मान ओल टेकिया अब इन्हें भी ने कोई आदमी गेड़ है भी कोई दिन के तो बेरो पड़े को नहीं कि भाई

0: आपने कोई तोलियो कोई इसी चीज हुए कि भाई
1: बचाव कर सका
0: ऊपर टड्डू आ सिरका लगा लिया इन्हें मैंने गैडा हुए कया भाई देखो कै टाट के मन लग गया अबे इतनी ऊंचाई में देखो भाई नींबू मान मान होड़ा हमें ठंडा बर्बर का तो कहेंगे डीम बन रहे यहाँ अभी तक वो चिरमराट चुका है वो गयो को नहीं
1: हैं
0: और आपा सुना कई बार जी यहाँ बैठे रेवड़ो है खेत का माइन ठाडा जी यहाँ होड़ा और पड़ जा ने तो
1: बहुत नुकसान हो जाए
0: नुकसान हुआ
1: हो जाए
0: सिर में लागने से हूँ और देखो के आदमी खत्म हो जा जगह जीव पशु बह देखो कई बार इस तरह की नौबत आ जाए
1: शिकार हो जाए
0: तो ये खातर प्रकृति को तो देखो कह नजारो तो है ही पर आपने जी बीमा कराई दी है फसल की जी पशुआ की बीमा हुआ तो क्यों किया है कि जो नुकसान हुए बिकी पूर्ति हो जाए
1: भाई गोपाल भाई देखो चर्चा मोकली करी कोई लोक रचना कुछ
0: भाई जरूर देखो के रेडियो का तीन उद्देश्य वही सूचना शिक्षा और मनोरंजन तो बातचीत आप और भी करांगा पर मनोरंजन भी किसानों को जरूरी है तो इस खातर पप्पू मस्ताना की आवाज ने मैं सुनावा या लोक रचना।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो एक बार किसाना को आपा फिर स्वागत करा और अंतराल से पहले आपा पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रमाई लोक रचना किसान भाई ने सुनाई लगन बिना जागे रे नर कोई। हाँ। और अपना जगह श्रोता ही बे ई टेम सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। और अब देखो के अगली जगह आपा बदलावन है देखो के किसना भाई कर पोलिया उसके बारे
3: भाई। देखो गोपाल भाई बात लिया है के अपारे अपना जगह किसान भाई देखो अधिकतर देखो वैज्ञानिक के खेती करने लाग रहे।
2: हाँ हाँ।
3: अब वैज्ञानिक खेती का मायने देखो के कई बरे बिना वक्त की जगी खेती है बापा करा।
2: ठीक बात।
3: जी हाँ आपने बेरो के भाई आजकल जगह टमाटर है भाई छटवारे मने और बहुत सारी इसी जगह आपने
2: सब्जी है फल है।

0: खाने खातिर मिले
1: सही।
0: अब ये देखो के मौसम के हिसाब से जे आपान बाव जे तो देखो आपने उत्पादन को हुए कोनी तो ओ जको पोली हाउस है वो देखो के पारदर्शी प्लास्टिक है और ओ आपने जको जकी भी आपा जगह आपा पोली हाउस जटे लगा रखे भी जगह ने पूरी जको तापमान है बिन एकदम से नियंत्रित करे।
1: ठीक बात है।
0: ज्यादा जे बारिश हुए तो भी बिन नुकसान को नहीं आवे, ज्यादा जे गर्मी पड़े तो भी कोई नुकसान को नहीं, कई बार ज्यादा जे ठंड पड़न लग जा तो भी बिन कोई नुकसान को नहीं, क्योंकि वो पूरे पूरे तापमान में एकदम से नियंत्रित रखे। तो ओ जुगो तरीको है विश्व आप देखो कौन से बखत के मायने कोई सी भी फसल है बा अगर आप लेनी चाहो तो ले सका। एक तो देखो फायदो हो गयो।
1: ठीक बात।
0: अच्छा दूसरी बात है कि भाई जका इका और के फायदा है बम आ है के जे मौसम के प्रतिकूल आपा कोई भी उत्पादन है वो ले सका। गर्मी के मायने कई बार सर्दी वाली जे सब्जी आपा लेनी चाहो तो भी ले सका, कई बार सर्दी में गर्मी वाली भी ले सका।
1: हां और अक्सर आपा देखो मंडी के मा देखने भी मिले आज मैं कई देखो गांव रावंद पे हैप करें कर रहे ए मूली ए गाजर
0: अब
1: मैं कठुआई अरे टमाटर ओड़ा कठुआया
0: सही है,
1: है? तो जका ने भाई इस चीज को ध्यान नहीं हुए बात को ज्ञान नहीं हुए तो बाके लिए देखो के असर जो है।
0: और एक बात और रघुपाल भाई के एज की बेमौसम की फसल है आपको किसान मायने बहुत फायदा हुए अगर मान लो जे लेन लाग जाओ तो जकी फसलों को वक्त के मायने मान लो जो भाव हुए पीछे बे वक्त के मायने भी को भाव लगभग बांध दुगड़ो मिले
1: पीछड़ा सावड़ मिले
0: पीछड़ा। तो भाई किसान ने तो देखो के जटे ₹5 आज ज्यादा अभी कहीं पड़नो जरूरी है।
1: ठीक बात।
0: तो किसान मैंने देखो सावचेत रहे कि वक्त के सागे चालनो चाहे और पोली हाउस की व्यवस्था करके आपने के जकी बिना मौसम की जकी फसला ही या जकी सब्जियां ही पे देखो लेनी बहुत जरूरी और पानी और जे उर्वरक की आपा बात करा तो एक मायने देखो बिकी भी बचत हुए।
1: ठीक बात है।
0: जहाँ ड्रिप सिंचाई है या फुहारा प्रणाली है बी कमाने आपा के भाई थोड़ा थोड़ा पानी सूर आ मान लो के लगभग 70% तक पानी है भी एक मायने बचाव हुए।
1: हाँ हाँ।
0: मोकड़ो पानी को नहीं गया फुहारा चला के छोड़ दिया घंटा दो घंटा थोड़ा सो पानी आपा दे लियो तो जो को पोली हाउस है वो देखो के टेम्परेचर ने तो नियंत्रित करेगी
1: करे
0: तो ज्यादा पानी की जरूरत कौन पड़े क्योंकि ज्यादा धूप लागे कौन तो पानी बहुत जल्दी सूखे कौन।
1: ठीक बात।
0: तो यो भी देखो फायदो है और कीट जे रोगा की आपा बात करा तो बस देखो मोकड़ो बचाव है।
1: सही बात।
0: क्योंकि इको काम यो ही है कि भाई तापमान है भी नियंत्रित करे और अनावश्यक जका भी आपने कीट रोग लागे वहां कीट रोग से अपन वो बचाव करे पोली हाउस।
1: ठीक बात है।
0: तो किसान मैं देखो के आपकी जितनी भी जगह है बिको नाप तोल करके और बिके हिसाब से वो पोली हाउस लगा की और प्रयोग करके देखना चाहिए
1: भाई कोई भी काम जिया किसान नो तेवड़े ने तो एक बार देखो के शंका होनी स्वाभाविक है रो मानव स्वभाव है पर आपनी सरकार भी मदद करनी और इमें भी देखो आज की ग्रीन हाउस या पुली हाउस की योजना है इमें भी देखो कई अलग अलग तरह की जगह किसान है बांध के सब्सिडी जगी है वह मिले और एक नयो जो काम है वो चालू हो गयो और आज की योजना है एक माँ देखो फूला की फला की खेती जगी है आ करी जावे है बी के अलावा जी उस दिए पौधा ही बागवानी है इकी खेती भी देखो करी जावे कहने का मतलब क्या है कि वो जो ढांचो वो स्ट्रक्चर जो आप बनावा बीम के फसल सब्जियां के लिए देखो अनुकूल वातावरण जो है ना वो तैयार करके और बन के चीजा जब उपलब्ध आप करवा हाँ। तो बेमौसम में भी वह चीजा देखो कि आसानी आपने उपलब्ध हो जावे तो मानसा के तो खाने काम आ जाए किसाना के देखो गोजड़ी है जी क्यों गर्म रहे
0: और भाई आपा देखो गोजी गर्म की बातचीत करा किसाना ने ज्यादा से ज्यादा फायदो खेती बाड़ी उठानो चाहिए
1: हाँ।
0: और नया नया जगह तरीके बागे सागे चालनो चाहिए आपने देखो कार्यक्रम को वक्त है जो पूरा हो गयो ये खातर हो जो मिलने तेने किसने भाई ने
1: और गोपाल भाई ने देव सीख करा हाँ।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज प्राम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और साथियों की आवाज में राजा बाबू फिल्म के इस गीत को। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

0: आप सुन रहे हैं कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में बोल राधा बोल फिल्म के इस गीत को। संगीत है आनंद मिलन का और शब्द रचना है समीर की।
1: मुझे

आप सुन रहे हैं दीवाना मस्ताना फिल्म के गीत को उदित नारायण, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

श्रोता इसमें सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म के गीत को कुमार सानू और साथियों की आवाज में। शब्द रचना है देव कोहली की और

आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में इस जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गीत को। शब्द है आनंद बख्शी के उस संगीत

श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता और आपको सुनवा रहे हैं कभी हाँ कभी ना फिल्म के इस गीत को अमित कुमार के साथ उदित नारायण की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत है जतिन ललित का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता में आखिरी पेशकश के रूप में आपको सुनवा रहे हैं ये दिल लगी फिल्म के इस गीत को, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। संगीत है समीर सेन और दिलीप सेन का और शब्द रचना है समीर की।

कुमार सानू और लता मंगेशकर के गाए ये दिल लगी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत में गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। रात्रि की 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और

0: राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान

0: भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: देते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
6: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities

0: हैं।
1: द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 265 मिलियन टन्स इन 2013-14 टू अराउंड 358 मिलियन टन्स इन 2024-25। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना विद अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 154 मिलियन टन्स। टुडे द इंडियन फार्मर स्टैंड्स नॉट जस्ट एज ए कल्टिवेटर बट एज ए की ड्राइवर ऑफ नेशनल ग्रोथ। विद दीपेंद्र, दिस इज आनंद कुमार फॉर आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
2: The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. A bench of Justices P.S. Narasimha and Arvind Kumar said the National Testing Agency is already facing multiple challenges after the cancellation of the examination. The court posted the matter for hearing on the 27th of next month. The Allahabad High Court has ruled that Lok Adalats and District Legal Services Authorities have no jurisdiction to grant divorce decrees, saying the power to dissolve a marriage rests exclusively with family courts. The Lucknow

107.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आपको सुनवा रहे हैं माधवी शर्मा और साथियों की आवाज में कुछ लोक रचनाओं को।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आप सुन रहे थे माधवी शर्मा और साथियों की गाई कुछ लोक रचनाओं को। FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048।

0: 2371717116 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे @iirnewsalerts पर भी #askiir के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन iir और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज़ को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत बार भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम

0: करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना था वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते
3: हैं? गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत बिल्कुल, क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
3: उसमें आप फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक।

0: हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी,
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए साधारण क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
1: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं कृपा करके?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपके शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर

0: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
1: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इस पर क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
2: कि जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
0: जी,
3: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
3: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल, और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह AC चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: IMD

0: जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से इन्होंने पूछा है।
0: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो IMD जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरखा जानकारी जो YouTube में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं, आपको ऐप से मिलेगा, WhatsApp में मिलेगा, देन सोशल मीडिया Facebook IMD का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर पर, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है, वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरकेशन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल जो बहुत, का
3: बिल्कुल
1: है,
3: बिल्कुल सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।

0: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं और कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशंस पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे।
2: देखिए जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं तो बट आजकल क्या होता है क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
2: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है एक जो जो भी इस राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी ये सारे जो है एक तरीके से रहता है तो पहला उनको क्या होता है एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार,

इसी कड़ी में आज हमने आपने आकाशवाणी के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्लेयर कृष्णा विरदा को। हम आपको बता दें

मतलब ये है कि आपके घर में एक खेलों का वातावरण रहा और एक पृष्ठभूमि मतलब घर में ही तैयार हो गई थी कि खेलों में जाना ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व, जब आपने पहली बार

अच्छा हम देखते हैं कि कबड्डी जो है कि परंपरागत खेल है, भारत में बहुत पुराने समय से कबड्डी खेला जा रहा है। आज के दौर में हम बात करते हैं, तो आज आप क्या देखती है कि कबड्डी में कुछ बदलाव

अब हम बात करते हैं कि नागौर में आप नागौर से संबंध रखती हैं और नागौर से आपने ये सफ़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तय किया था। नागौर में अगर खेल सुविधाओं की हम बात करें तो क्या मतलब आपका डेली रूटीन रहता है, और नागौर जैसे ज़िले में

0: में हो रहा है काम, रेजियम वगैरह सब है। कबड्डी की तो सभी सुविधाएं हैं, सभी गेमों की सुविधाएं मिलेंगी आपको।
1: जी बहुत अच्छी बात है। देखो नागौर में रूढ़िवाद और अंधविश्वास भी काफ़ी है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आपको भी ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा कि एकदम से ये खेलों में जा रहे हो आप इस
0: नहीं सर,
1: तरीके से?
0: ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक।
1: साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि

बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका क्या रोल है, मतलब कबड्डी की जो प्रतिभाएं हैं राजस्थान में उनको तराशने में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का कितना रोल रहा?

हमने सुना है कि शतरंज को देखने के लिए ऑडियंस नहीं होती, जबकि और गेम्स में ऑडियंस होती है, काफ़ी शोरगुल होता है और वो उससे हम प्रभावित भी होते हैं, हमारे गेम में कुछ अच्छा हो जाए जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है। तो जो माहौल होता है बिल्कुल शांत,

0: डिस्टर्ब होते हैं।
1: जब आपको बाहर जाना पड़ा टूर्नामेंट खेलने, मम्मा साथ गए थे, पापा कैसे सपोर्ट करना परिवार?
0: हमेशा मेरी मम्मा साथ गई हैं ज़्यादातर, पापा भी कभी कभी कुछ टूर्नामेंट्स में मुझे लेके गए हैं, बट ज़्यादातर मेरी मम्मा साथ जाती हैं, कभी कभी मेरी सिस्टर।

0: जब मैं पहली बार स्टेट में मेडल लेकर आई थी, तब मैं अंडर 11 स्टेट में 2016 में सेकंड आई थी और मेरा अखबार में पहली बार नाम आया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो मैंने मामा से कहा था कि देखो मैं भी नाम रोशन करने वाला बालक बन रही हूँ।
1: तो इस बात को लेकर मम्मा बहुत खुश हुई
0: हाँ जी
1: है ना। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारा कोई रोल मॉडल होता है उसकी गेम से रिलेटेड या कोई और भी हो सकता है। चेस को लेकर आपका कोई रोल मॉडल है, आदर्श प्लेयर?
0: हाँ जी, मैंने स्टार्ट भी विश्वनाथन आनंद सर को देख के किया और वही मेरे रोल मॉडल हैं।
1: क्या खासियत है उनमें?
0: इंडिया के तो वो बेस्ट प्लेयर हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वो काफी अटैकिंग खेलते हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
1: अच्छा, अटैकिंग खेल

चलिए आशी, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शतरंज में बड़ा नाम बने इंडिया का और पूरे देश में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और वो जो आपने कहानी पढ़ी थी विश्वनाथन आनंद की, नाम रोशन करने वाला बालक, उसी की तरह आशी उपाध्याय भी शतरंज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बने, नाम कमाए। आज आप आकाशवाणी

0: खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया गया। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं कृपया हमारे अगली घोषणा की प्रतीक्षा करें।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ प्रामा आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में।

0: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गयी। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द The news shared by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of